वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम अपने सफर को आगे लेकर चलें, भाई रोज का जो दस्तूर है उसे भी निभा देते हैं। जी हाँ, विश कर देते हैं उन्हें जिनके लिए आज का दिन एक बार फिर से है स्पेशल और खास, यानी जिनका आज है हैप्पी बर्थडे, उन सबको जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी खुशियों से महकती रहे, चहकती रहे और आपको जिंदगी में हर वो जायज चीज मिले जिसकी आप ख्वाहिश करें। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, उन सबको शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आप सबको वेडिंग एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो और हम विश करते हैं कि ये वेडिंग एनिवर्सरी जो है, या जो आपका और आपके पार्टनर का जो साथ है, ये आपके रिश्ते को और भी मजबूती दे। आने वाले साल आपकी जिंदगी में ढेर सारा प्यार और एक ऐसा विश्वास लेकर आए जो कभी भी टूट ना सके। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबकी जिंदगी खुशियों से महकती रहे और जो भी आज के दिन को लेकर आपकी ख्वाहिशें हैं वो जरूर मुकम्मल हों। इसी विश के साथ आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं वो गाना जो मैंने खास तौर से आप सबको डेडिकेट किया है। एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए, इट हैपेंस, आपके साथ है सताक्षी।

हैपन्स एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। दोस्तों आज आपके साथ एक बार फिर से है सताक्षी। कभी कभी मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि भाई हम हमेशा बात करते हैं ना अटैचमेंट की, अपनेपन की, बट आज वो वक्त हमारी जिंदगी में आ चुका है कि अटैचमेंट के नाम पर ना सिर्फ मेल अटैच ही रह गए हैं। सोचने वाली बात है, कड़वा सच है लेकिन सच है ना। आज सिर्फ आपकी प्रोफाइल पर, आपके जीमेल अकाउंट पर, आपके मेल अकाउंट पर सिर्फ अटैचमेंट ही तो अटैच होके आते हैं, वरना अटैचमेंट के नाम पे बचा क्या है हमारी जिंदगी में। सब कुछ खत्म हो गया है, दिलों की दूरियां बढ़ रही हैं, लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आता है कि किस प्रॉफिट की तरफ भाग रहे हैं, जो कि अपनापन हमारी जिंदगी से खत्म हो रहा है। कौन सा प्रॉफिट मिलने वाला है अपनों के बिना? आपको सोचने वाली बात है, सोचिए। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले ट्रैक के साथ, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम। बने रहिए सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में।

कई बार हम सोचते हैं कि जो भी हमें चाहिए वो हमसे दूर है, मतलब 5 साल 6 साल 10 साल ये मार्जिन है हमें उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां पर हमारे सपने पूरे होंगे। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैजिकली आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए? एक रात में एक डिसीजन जो है वो आपकी पूरी जिंदगी मैजिकली बदल दे। मतलब जो आपने 5-10 साल के लिए टारगेट बनाया है वो 1 या 2 साल में ही आप अचीव कर लें, ये पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल है। वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर, जिसकी कमी है शायद आप में, या वो डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे हैं, वो डिसीजन आप ले करके आप मैजिकली शायद अपनी जिंदगी बदल लें, है ना? क्योंकि जिंदगी में मैजिक्स भी होते हैं, विश्वास रखिए। और आइए इसी बात पर बढ़ते हैं आगे आपके अपने ब्रेकफास्ट शो में। एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों, इट हैपेंस में अब हम आ गए हैं हमारे गानों की हैट्रिक के सफर में। जी हाँ, गानों की हैट्रिक, जहां पर तीन बैक टू बैक ट्रैक्स आपके लिए हर रोज हम लेकर आते हैं। तो आइए गानों की हैट्रिक के इस पहले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे।

रेडियो प्रस्मानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं गानों की हैट्रिक, और अभी आपके लिए पेशे खिदमत है ये अगला ट्रैक हमारे गानों की हैट्रिक का। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्मानी 1701 AM।

सताक्षी का साथ और इट हैपेंस पर मेरी और आपकी प्यार की बातें हम आगे भी कंटिन्यू जरूर रखेंगे, लेकिन गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक अभी एंजॉय करते हैं। इसे एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर मेरे साथ। जी हाँ, गानों की हैट्रिक।

दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ना कई ऐसे लोग होते हैं जिन पर प्राउड करने का मन होता है। हम नॉर्मली बात करते हैं कि हमें खुद पर गर्व होना चाहिए ना, लेकिन हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनको मैंने जिंदगी में काफी स्ट्रगल करते देखा है, जिंदगी के थपेड़ों को सहते देखा है, उनसे निकलते देखा है और फिर दोबारा अपने पैरों पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा है। तो उन सबसे भी आज यही कहना है कि भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपके जिंदगी में भी ऐसे लोग जरूर होंगे जिन पर आपको प्राउड फील होता होगा, जिनके साथ आपको ऐसा लगता होगा कि यार, इसके साथ होना मेरे लिए गर्व की बात है, जिनको आपने जिंदगी के थपेड़ों को सहकर आगे बढ़ते देखा होगा। उन सबको हमारे रेडियो प्रस्थानी के फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि आप कितना प्राउड फील करते हैं उनसे। चलिए, आप उन्हें

तब तक मैसेज कीजिए और मैं आपके लिए प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। Keep listening to Radio Prasmani 1701 AM, आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस और ये गाना आपके खास उन लोगों के नाम है जिन पर आपको गर्व।

इस एक और मॉर्निंग ट्रैक के बाद एक बार फिर से आप मैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग आपको एक बार फिर से। दोस्तों कितनी अजीब बात है ना, जब छोटे थे तो हर बात को भूल जाया करते थे और हमारे बड़े हमसे कहते थे, लोग हमसे कहते थे कि भाई याद रखना सीखो, क्या मेमोरी है तुम्हारी। और अभी देखिए बड़े हो गए तो हर बात याद रहती है और अब लोग कहते हैं कितनी शार्प मेमोरी है तुम्हारी, बातें भूलना सीखो। अब समझ में नहीं आता है कि भाई बचपन अच्छा था या आज का वक्त अच्छा है, भूलना अच्छा था या याद रखना अच्छा है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है भूलना अच्छा था। भूल जाते थे तो दिल में गांठें नहीं बनती थी, बात आई गई हो जाया करती थी। अभी एक छोटी सी बात को भी हम दिल में इस कदर बैठा लेते हैं कि बरसों से याद रखते हैं, तो शायद बचपन का भूलना ही अच्छा था। आप बताइए आपको क्या लगता है, हमारी रेडियो प्रस्थानी के फेसबुक पेज पर जाकर हमें बताइए क्या लगता है आपको, भूलना अच्छा था या याद रखना। और मैं प्ले करती हूँ आपके लिए ये अगला ट्रैक, स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: Na tere varga aashiq vekhya, na tere vargi aashiqui.
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan
13: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
2: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लब्भण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में

0: वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ।
1: ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆਸ਼ਕੀ।
2: ARY Films and Salman Iqbal present Love Thee Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik.
3: Tere jai koi hor ni honi, mainu lagdi heer to soni.
2: Love Thee Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

जी आया नु जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वंसर मोरे हम ते चार छे संदेश चौलक दिनाल सु बने हुए। इस बार अगला नाम नवाब साहब दा आंदा है ते नवाब साहब है गने सैफ अली खान। जी हां, सैफ अली खान नु ना फिल्म क्या कहना है दे सेट ते एक खतरनाक हादसे दा सामना करना पिया सी। क्या कहना फिल्म ते याद आ गई ना थानू? बहुत ही सोहनी प्रीति जिंटा दे नाल फिल्म है, बहुत ही प्यारी ते बहुत ही सोहनी स्टोरी भी हैगी है। खतरनाक हादसा होया सी उन्हां दे नाल। एक सीन विच उन्होंने बाइक चलानी सी, इस दौरान सैफ ने बाइक तो कंट्रोल खो दिता सी ते डिगदे डिगदे ओह वड्डे पत्थर दे नाल जा टकराया सी। उन्हां दा कुछ महीने तक कंटीन्यूअसली इलाज चलता रहा सी।

होगा, ग्रुप भी होगा और फिजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉक्स सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉक 2026 आपका इंतजार रहेगा।

हां जी, थैंक यू फॉर टू, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.1 ते जी आर जी संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। अगला नाम केड़ा आंदा है? वो आंदा है जी ऐश्वर्या राय बच्चन दा। इन्नी खूबसूरत अदाकारा है, एक्शन भी करती है कि वो। ऐश्वर्या राय बच्चन भी फिल्म खाकी दी शूटिंग दे दौरान मरते मरते बची है। खाकी याद आ गई ना थानू? याद कर लो, मैं सीन दस दिनी हां। दरअसल उन्होंने शूटिंग विच जीप दी राइड करनी सी, जीप दा बैलेंस बिगड़ गया ते वह हेठां डिग गई सी। इस तों बाद ऐश्वर्या दा अस्पताल दे विच इलाज चलदा रिहा सी काफी समय तक, रिपोर्ट्स कहंदियां ने।

0: may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्होंने दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नज़दीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। वी प्राइड आवरसेल्व्स इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस।
4: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
5: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
6: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
5: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज्जी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ, ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस, ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
6: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
5: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

ना बदला मैं, ना बदला वो, ना बदला तू। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर, अब है ट्विटर, पहले थी बुक, अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम, अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी, अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: 보관.
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत बहुत ही खास स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्शी निविया के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी फ्राइडे। जी हाँ, इंतजार कर लिया, काम कर लिया, इत्मीनान भी कर लिया, सब कुछ कर लिया और फाइनली जो है वो फ्राइडे आ गया है एंड वी कांट हैप्पी। जी हाँ, मतलब हम इससे ज्यादा क्या ही खुश हो सकते हैं। फ्राइडे इज हेयर, मस्ती इज हेयर, सुकून इज हेयर, एवरीथिंग। मतलब फ्राइडे से रिलेटेड जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब आपको मिलने वाली है। वीकेंड से रिलेटेड जितनी भी अच्छी चीजें वो आपको मिलने वाली है। हाँ, मतलब उन्हीं लोगों को पसंद नहीं आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा वर्कहोलिक है, जिनको काम करना बहुत पसंद है और उनको लगता है कि वीकेंड में काम का पेस जो है वो टूट जाता है। सो या टू माई वर्कहोलिक लिसनर्स जो कि बहुत ही एम्बिशियस है, आई नो आपको थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, फिर से मंडे आ जाएगा, फिर से आप अपने गोल्स की तरफ उतनी बढ़ोगे जितने कि आप इस हफ्ते बढ़ रहे थे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा सीट पर बैठने की जरूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। लेकिन अभी एग्जैक्टली रिलैक्स नहीं हो रहा है क्योंकि फ्राइडे अभी थोड़ा सा बाकी है, मतलब काम अभी भी चल रहा है। और तो ध्यान हमारा काम की तरफ नहीं है, ध्यान तो हमारा कहीं और ही है। आई नो। सो आइए प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। और प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक बहुत ही स्पेशल और हेल्दी रिचुअल के साथ। सबसे पहले हम डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने इस प्रोग्राम में ही अपने आप को तैयार नहीं करती हूँ, हमेशा किसी भी चीज की शुरुआत में ही करती हूँ। आप भी कीजिए, ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा। वेल, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए सबसे पहले क्या बात है और क्या बात है। जी हाँ, इसी के साथ करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत मजेदार गाने के साथ। और ये है नजरें मिलाना नजरें चुराना कहीं पे कहीं पे जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा बाकी सब तो ठीक है, बट व्हाट इज दिस वेल, ये आप खुद ही जान लीजिए।

जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये गाना निव्या शर्मा, ये माशुका माशुका जो तुमने अभी प्ले किया, कौन से पिक्चर का है? वेल, मुझे पता था कि आपके दिमाग में, आपके मन में सवाल होंगे. क्यों? क्योंकि ये गाना जो है आप पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि ये गाना अभी दो दिन पहले आया है, और दो दिन पहले भी नहीं, एक दिन पहले आया है. और ये माशुका सॉन्ग जो है वो है कॉकटेल 2 का गाना. जी हाँ, कॉकटेल 2. एंड आई डोंट नो, बट आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड. व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट? क्योंकि माशुका जो है एंड कॉकटेल 2 जो है वो एक जबरदस्त और वेरी वेरी फेमस और काफी सक्सेसफुल मूवी कॉकटेल का सेकंड पार्ट है. लेकिन इसमें आपको दीपिका पादुकोण, दियाना पेंटी या सैफ अली खान नहीं मिलने वाले, जो कि इसकी प्रीवियस कास्ट थी. लेकिन इसमें आपको मिलने वाले हैं शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना. जी हाँ, इनफैक्ट अभी दो दिन पहले ही इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, इसका सॉन्ग लॉन्च हो रहा था, और वहीं पर रश्मिका मंदाना भी एकदम से सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने एफ वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि वो तारीफ कर रही थी कृति सैनन की. शी वाज लाइक, यू नो व्हाट, यू आर सो सेक्सी. जी हाँ, यू आर सो सेक्सी, दैट्स व्हाट शी सेड. ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ और भी बोला, लेकिन हम वो यहाँ पर नहीं बोलने वाले हैं. लेकिन उसके बाद सुर्खियों में रश्मिका मंदाना आ गई थी, और रश्मिका मंदाना को खुद ही पता चल गया था जब उन्होंने वो वर्ड बोल दिया. एंड देन शी वॉज लाइक, ओ माई गॉड, नो नो नो नो नो नो नो नो, ये नहीं करना है, इसको सेंसर मत कीजिएगा, ये वो, यू नो, बहुत कुछ कहा गया. लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए कृति सैनन, सच में बहुत ज्यादा हॉट लग रही है. जो दीपिका पादुकोण लग रही थी ना, वैसी ही हॉट. आप लोग बोलोगे कि दीपिका पादुकोण का कोई मुकाबला नहीं है, इफ यू आर अ दीपिका फैन, बट आई हैव टू से कृति सैनन इज ऑल्सो लुकिंग रियली रियली रियली जेजी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आप भी कीजिए, क्योंकि 19 जून को ये मूवी रिलीज होगी. अभी नहीं हो रही है, 19 जून को होगी, लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना है, बिकॉज इट्स कॉकटेल 2 आफ्टर ऑल. लेकिन एक और चीज है जो कि प्रेशर में रहेगी ये मूवी, क्योंकि कॉकटेल 1 ने बहुत ही अच्छा काम किया था. सो अगर ये नहीं करेगी तो गड़बड़ हो सकती है. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो.
3: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों, आप सबसे पहले जरा बात कर ली जाए किस चीज के बारे में. आप लोग बोलोगे तो पहले ही बात कर ली है आपने कॉकटेल 2 के बारे में. आप सबसे पहले नहीं, सबसे दूसरी बात हो गई निविया शर्मा. चलिए ठीक है, मुझे बताया आप लोग हमेशा सही बातें करते हो तो मैं मान जाती हूँ. ओके, दूसरी बात है मौसम की बात. और मौसम क्या कह रहा है? जी हाँ, आज क्या कह रहा है, वीकेंड भी क्या कह रहा है, कल और परसों कैसा रहने वाला है. Well, we are gonna talk about it, ताकि आप अच्छे से प्लानिंग कर पाओ अपनी आउटडोर एक्टिविटीज को, क्योंकि बारिश बड़ा रोल प्ले करती है बाहर घूमने में. जी हाँ, 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर अगर बात की जाए अभी की, तो 22.8 डिग्री सेल्सियस के करीब आपको फील हो रहा है. और वहीं आप फील कर पा रहे हैं 20.7 डिग्री सेल्सियस के, मतलब अभी 22.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बट फील हो रहा है 20.7 डिग्री सेल्सियस के करीब. जी हाँ, ये तो रही दिन की बात. रात की अगर बात की जाए तो 2 डिग्री तक आप गर्माहट फील कर पाएंगे. मतलब पिछले कल का टेम्परेचर 13 तक गिर गया था, आज 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जितना मैं देख पा रही हूँ. नो चांसेस ऑफ बारिश बट मोस्टली सनी एंड बिट क्लाउडी कहीं कहीं पर. जी हाँ, यहाँ पर ये है आज का हाल. और अगर हवा की बात की जाए, एयर क्वालिटी की बात की जाए, तो वो है एकदम फेयर. जी हाँ, कल की यानी कि सैटरडे की बात करते हैं, मोस्टली सनी रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा बाहर, एकदम यू नो सोंधी सोंधी सी जो है वो धूप रहेगी, प्यारी सी धूप रहेगी और वो अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है, उतना ठंडा नहीं रहने वाला है. और 30% चांसेस हैं बारिश होने के. संडे को अगेन पॉसिबिलिटी है बारिश की, 50% चांसेस है, पर 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाला है. लेकिन कल जो है वो काफी कम चांसेस है, 30% मतलब बहुत ही ना के बराबर. तो आप कल के लिए अपनी आउटिंग्स प्लान कर सकते हैं. ऑल दो संडे के लिए थोड़ी सी बारिश प्रिडिक्ट की गई है यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं. बट स्टिल आई वुड से कि सैटरडे को अपनी आउटिंग्स प्लान कीजिएगा. संडे को अगर आपको कुछ घर में करना है तो वो आप संडे को कीजिएगा. जी हाँ, ये है मौसम का हाल. और ये है वीकेंड में मौसम का हाल जो कि वो रहने वाला है जितना मैं देख पा रही हूँ. ऑल दो इसमें चेंजेस हो सकते हैं, यू नो दैट मौसम है अनप्रडिक्टेबल है. जी हाँ, इसी के साथ ये है मौसम का हाल. और आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और गाना आपको सुनाते हैं जबरदस्त सा.

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं आपकी फरमाइशों की तरफ, क्योंकि आपकी फरमाइशों के बिना हमारा प्रोग्राम अधूरा है। वेल, आपको तो पता ही है, हमें भी पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, जिन नए लिसनर्स को नहीं पता है, उनको बता दें, आप हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने फेवरेट गानों के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको करना क्या है, आपको एक नंबर डायल करना है और वो नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर यही नंबर डायल कीजिए, कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कीजिए और जल्दी से भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश, क्योंकि आपकी फरमाइशें हमारे प्रोग्राम में जान नहीं जहान डालती हैं। जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए यहां पर। तब तक के लिए हमारी तरफ से एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अगर आप भी ड्रेक के फैन हो तो मैं आपको बता दूं कि ड्रेक की जो एल्बम है आइसमैन, उन्होंने उसमें एक ग्लव्स पहने हैं, मतलब एक ग्लव नहीं पहना, दोनों हाथों में ग्लव्स पहने हैं। तो वो जो ग्लव्स हैं वो किसके हैं? कैन यू गेस वो ब्लिंगी से जो ग्लव्स हैं वो किसी बहुत ही खतरनाक डिजाइनर ने डिजाइन नहीं किए, मतलब ऑफकोर्स खतरनाक डिजाइनर ने डिजाइन किए लेकिन वो अपनी डिजाइनिंग के लिए फेमस नहीं है, वो किसी बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी द लेजेंडरी के ग्लव्स हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रेक ने लिटरली उन्हें अपनी एल्बम में शामिल करने के लिए जितने पैसे खर्चे थे वो काफी खतरनाक रकम थी। जी हाँ, उन्होंने ऑलमोस्ट 150,000 रुपीज खर्चे थे उन ग्लव्स के लिए। आप लोग बोलोगे कि ब्लिंगी ग्लव्स, इतने ज्यादा पैसे? वेल, अगर वो ग्लव्स होंगे माइकल जैक्सन के तो कैसे नहीं होगा। सो ड्रेक ने रिपोर्टेडली स्पेंड किए अराउंड $123,000 फॉर बाइंग माइकल जैक्सन आइकॉनिक क्रिस्टल ग्लव फॉर हिज आइसमैन एल्बम कवर ट्रिब्यूट। आप लोग बोलोगे तो ठीक है यार, मतलब अच्छी बात है क्योंकि उसके बाद जो पूरी तरह से रिकवरी की है उन्होंने, उसके बारे में भी तो बात करो। वेल, उनकी जो तीन एल्बम्स हैं जो उन्होंने एक ही साथ ड्रॉप कर दी, आई नो उसमें खर्चा बहुत हुआ है, सिर्फ ग्लव्स के लिए अगर उन्होंने 123K खर्चे हैं तो फिर ऑफकोर्स पूरी एल्बम्स बनाने में, और वो भी तीन एल्बम्स बनाने में कितने पैसे खर्च हुए होंगे। लेकिन वही एल्बम्स अगर लिटरली स्पॉटिफाई और एप्पल को क्रैश कर दें तो फिर तो बनता है भाई, फिर तो बनता है, और क्रैश करना भी बनता है भाई, इतनी महंगी एल्बम्स बनी है, क्यों नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि ड्रेक की एल्बम्स में आपको कौन सी एल्बम सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और क्या आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो? आप भी क्या उन लोगों में से हो कि कोई पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है और उसके लिए आप कितनी भी रकम देने के लिए तैयार हो? क्या आप भी उन लोगों में से हो? जी हाँ, जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

பேட்டுனம் லவ் லஸ்ட் டபுள் கஷ்டப்படாடிட்டுனம்.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। जी हाँ, एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर एक 8 साल के बच्चे ने नासा की गड़बड़ पहचान ली, मतलब नासा की स्पेलिंग मिस्टेक संभाली। आप लोग बोलोगे कि माना कि पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन जो है, पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज है उनके स्पोक्स पर्सन जो है वो गड़बड़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे नासा के स्पोक्स पर्सन भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो एक 8 साल के बच्चे ने स्पोर्ट किया है नासा के वेबसाइट का एरर। जी हाँ, और साथ में फनी चीज ये हुई कि जब उसने ये स्पोर्ट किया, जब उसने उसके बारे में लिखा, ट्वीट किया, तो उसके बाद नासा ने रिप्लाई भी किया। जी हाँ, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि ऊप्स, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट टू अस, वी आर ऑन आवर वे टू रिट्रीव दैट मिसिंग लेटर। जी हाँ, सो उसने लिखा था कि ही मतलब ऑफकोर्स उसने नहीं लिखा था, उसकी माँ ने लिखा कि माई 8-year-old जस्ट फाउंड आउट अ स्पेलिंग मिस्टेक ऑन योर वेबसाइट, ही इंसिस्ट दिस इज अ क्रिटिकल मिशन अपडेट। जी हाँ, और यहां पर जो है एक्सप्लोर जुपिटर, मतलब उसने उस चीज को जो है वो रीट्वीट किया हुआ था जहां पर नासा ने एक्सप्लोर जुपिटर की जगह एक्सप्लोर जुपिटर लिखा हुआ था, और इसीलिए उसने उसको सर्कल किया था। उसकी मॉम ने वो ट्वीट किया और लिख दिया कि मेरे 8 साल के बच्चे ने कहा है कि यहां पे कुछ गड़बड़ है एंड ये क्रिटिकल मिशन अपडेट की जरूरत है यहां पर। तो फिर क्या था, नासा ने अपडेट के साथ साथ वहां पर रिप्लाई भी कर दिया। उन्होंने कह दिया, और बहुत ही स्टाइल और क्लासी वे में और टेस्टफुली उन्होंने कहा कि ऊप्स, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट टू अस, वी आर ऑन आर वे टू रिट्रीव द मिसिंग लेटर। या इट वॉज फनी। बता देंगे इसकी, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी मिस्टेक्स पकड़ लेते हैं ना, सो मतलब ध्यान से। और मैं तो कहती हूँ छोटे बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है, क्योंकि वो ऐसी चीजें ऑब्जर्व करते हैं ना। एंड द थिंग इज के बड़े लोग तो फिर भी चुप हो जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे जो वो बोलना चाहते हैं, बट छोटे बच्चे सब कुछ बोलते हैं। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी गड़बड़ करनी हो, पहले तो कीजिए ही मत, लेकिन छोटे बच्चों के सामने तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो बोल देंगे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं फ्राइडे की मेन चीज की, फ्राइडे की हाईलाइट की। वेल ऑफ कोर्स फ्राइडे की हाईलाइट होता है बॉलीवुड रिलीज पिक्चर, मूवीज जो रिलीज होती हैं, और क्या हुआ है इस हफ्ते रिलीज, आइए जरा बात कर लेते हैं उसके बारे में। क्योंकि एक मूवी है जिसका नाम है चांद मेरा दिल, जो कि म्यूजिकल होने वाली है, सेंटी होने वाली है, ड्रामा से भरे होने वाली है और ऑफ कोर्स रोमांटिक होने वाली है। सैयारा इज द बेस्ट एग्जांपल। पिछला साल रोमांटिक मूवीज के लिए, म्यूजिकल रोमांटिक मूवीज के लिए बहुत ही अच्छा था, और ये साल भी अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या अनन्या पांडे और लक्ष्य ऐसी केमिस्ट्री जगा पाएंगे, वेल ये तो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि जनता ही सब कुछ डिसाइड करती है। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों को ये मन है मूवी देखने का या नहीं, पहले आप इसका ट्रेलर देखिए। और ये मूवी जो है वो लग चुकी है, ऑफ कोर्स आप इसे जाकर अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं। इसी के साथ यहां पर बात करते हैं पति पत्नी और वो दो की। जी हाँ, इस मूवी को लगे हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, और ये मूवी है आयुष्मान खुराना, भामिका गाबी, सारा अली खान एंड राकुल प्रीत की। जी हाँ, मतलब आप टाइटल से ही सोच लीजिए कि टाइटल में लिखा हुआ है पति पत्नी और वो दो, मतलब पति पत्नी है लेकिन एक और लेडी नहीं, दो और लेडीज हैं, मतलब और भी बवाल। बॉलीवुड ना खतरनाक ही सब्जेक्ट चूज करता है लिटरली। जी हाँ, बट या इट्स अ फनी मूवी और इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ रोमांटिक मूवी, गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको ये कैसी लगी। जी हाँ, ऑल द पति पत्नी और वो एक फेमस सीरीज है जिसको पहले जो है दो मूवीज पहले ही आ चुकी हैं, और ऐसे में ये तीसरी मूवी है। इसके अलावा दादी की शादी कैन बी योर ऑप्शन। जी हाँ, दादी की शादी, जिसमें नीतू सिंह आपकी सिल्वर स्क्रीन पर आ रही है कपिल शर्मा के साथ। जी हाँ, कपिल शर्मा और उनकी दादी बनकर, और यहाँ पर उनको शादी करने का मन है। जी हाँ, पोते को नहीं, दादी को। क्या होगा ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे देखोगे। अगेन इट्स अ रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी, फनी मूवी एंड ड्रामा से भरी हुई। जी हाँ, सो इसको भी देखिए, इट्स अ फैमिली मूवी, मतलब ये तो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप हॉरर कॉमेडीज में इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि बॉलीवुड आजकल अच्छी हॉरर कॉमेडीज बना रहा है, देन यू कैन गो फॉर भूत बंगला, बिकॉज भूत बंगला अभी भी लगी हुई है थिएटर्स में। दो हफ्ते से ज्यादा हो गया है इसको रिलीज हुए, और यहां पर ये मूवी आगे क्या काम करेगी ये तो आप ही को पता होगा, क्योंकि आप इसे देखेंगे एंड देन आप डिसाइड करेंगे, और देन आप अपना कीमती रिव्यू देना हमें बिल्कुल मत भूलेगा। सो ये तो है कुछ बॉलीवुड रिलीजेस जो आप देख सकते हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट द हॉलीवुड वंस, पहले हम आपके लिए एक गाना प्ले करेंगे।
1: चुकलु पुत्र, चुकलु पुत्र, चुकलु पुत्र, चुकलु पुत्र।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
3: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: गो फॉर द बेस्ट विरे, अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
5: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात हो गई है। हॉलीवुड में क्या क्या मिलेगा देखने को, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। जी हाँ, सो स्टार वॉर्स द मेडोलोरियन एंड ग्रोगू आई डोंट नो, कभी कभी मूवी वाले जो टाइटल्स रखते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि सारी की सारी क्रिएटिविटी उन्होंने अपने टाइटल में ही डाल दी है लिटरली. मतलब सामने वाला बोल भी नहीं पाता, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट्स हैपनिंग विद मी. सो स्टार वॉर्स द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू जो है वो रिलीज हो गई है, वो थिएटर्स में लगी हुई है. इट्स एन एक्शन एडवेंचर एनिमेशन साइफाई मूवी एंड इट्स अ स्टार वॉर्स मूवी, सो यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड फॉर श्योर. जी हाँ, इसी के साथ जो मूवी लगी हुई है वो है मोर्टल कॉम्बैट सेकेंड. अगर आपने मोर्टल कॉम्बैट गेम नहीं खेली है, अगर आपने पहली मूवी नहीं देखी है, तो आपने बहुत कुछ मिस किया, बिकॉज इट्स अ गुड गुड गुड गुड मूवी. जी हाँ, एंड इट्स एक्शन एडवेंचर फैंटेसी, सो यू आर गोना लव इट, बिकॉज यू नो एनीथिंग फैंटेसी आई लव इट. मुझे फैंटेसी इज माय फेवरेट, पर्सनल फेवरेट जॉनर. व्हाट अबाउट यू, जरूर मुझे बताइएगा. और मॉर्टल कॉम्बैट सेकंड के साथ यहां पर द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी भी लगी हुई है, इसे आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं. लेकर जाकर उन्हें लेकर जाइए और फिर उन्हें दिखाइए और फिर मुझे बताइए कैसी लगी. इसी के साथ ली कॉनिंस द मम्मी, दिस इज my personal favorite, but it's a horror movie and it's a creepy movie, so if that is your genre, go for it. लेकिन अगर आपको डर लगता है और थोड़ा सा ज्यादा डर लगता है, फिर बिल्कुल भी मत जाइएगा. मतलब मुझे जो कि horror movies पसंद करती है, वो भी theater से भागने का सोच रही थी जब मैं इस movie को देख रही थी. So you can imagine कितनी ज्यादा खतरनाक है ये movie. जी हाँ, so ये है कुछ Hollywood movies जो आप देख सकते हैं. And at last, Krishna Vatharam, which is not a Hollywood movie, it's a Bollywood movie, लेकिन फिर भी Bollywood नहीं है. और ये है खूबसूरत सी movie जो कि लॉर्ड कृष्णा की झलक आपको दिखाएगी. लॉर्ड कृष्णा की वो खूबसूरत रासलीलाएं आपको दिखाएंगी और वो सारे के सारे कारनामे दिखाएगी जो कि आप जानते हो, लेकिन जो कि आप नहीं भी जानते हो वो भी दिखाएगी, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव है उनके सेकंड महारानी सत्यभामा का, जिस पर्सपेक्टिव से ये बनी है या नजरिया उनका है. सो या गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा ये सारा का सारा जो मटेरियल, जो कंटेंट आपको मिलने वाला है बाहर, ऑफकोर्स घर के बाहर थिएटर्स में. एंड लेट मी नो आप कौन सी मूवी देखने वाले हो, कौन सी आपकी चॉइस है. इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.
8: अच्छा

जी हाँ दोस्तों, और अब हम बहुत ही खुफिया बात करने वाले हैं, और ये खुफिया बात एग्जैक्टली सच है या नहीं, लेकिन ये थ्योरी तो डेफिनेटली है. ऑफ कोर्स, और किसी भी चीज की अगर कोई थ्योरी है जिसके बारे में नहीं सुना है तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे. एंड आज मैं बात करने वाली हूँ द लेजेंडरी शिप टाइटैनिक. जी हाँ, सो ऐसा कहा जाता है और लोगों के बीच ये उड़ती उड़ती खबर है कि कभी टाइटैनिक डूबा ही नहीं. जी हाँ, टाइटैनिक जो कि अनडिस्ट्रक्टेबल कहा जाता था, जैसा कहा जाता था कि ये शिप कभी नहीं डूब सकता, ये इतना मजबूत है, इतना ज्यादा पावरफुल है, वो कैसे डूबा? और कुछ लोगों का कहना है कि जैसे भी डूबा, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं. वेल, ऑफ कोर्स इसके बारे में बहुत सारी थियोरीज है, लेकिन एक थियोरी ये भी है कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं. आप लोग बोलोगे टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं, ये क्या मतलब हुआ? जी हाँ, टाइटैनिक ऑफ कोर्स डूबा है, मतलब उस वक्त के बहुत सारे फाइनेंस वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग उस शिप पे थे और वो सब के सब अपनी जान से हाथ धो बैठे थे उस शिप में होने की वजह से. Now, let me tell you a theory. जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक के जो ओनर थे उनके पास टाइटैनिक जैसा ही एक और बहुत बड़ा जहाज था जिसका नाम था ओलंपिक. जी हाँ, ओलंपिक एंड टाइटैनिक, दो बड़े जहाज. ओलंपिक पुराना था, टाइटैनिक नया था. ऐसा कहा जाता है कि ओलंपिक पहले बहुत सारी सेल्स कर चुका था और उसकी वजह से काफी जगह से उसको जो है वो नुकसान भी हुआ था, और ऐसे में इंश्योरेंस कवर वो चाह रहे थे. जी हाँ, इंश्योरेंस कवर वो चाह रहे थे ओलंपिक के लिए. लेकिन ओलंपिक का इंश्योरेंस कवर उसके ओनर्स को तभी मिलता अगर कोई एक्सीडेंट होता, कुछ भी ऐसी त्रासदी होती जहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती. सो ऐसे में जब टाइटैनिक सेल करने वाला था, जब उन्होंने टाइटैनिक को बुक किया लोगों ने, तो सेलर्स नहीं बल्कि जो ओनर्स है उन्होंने एन मौके पे टाइटैनिक को स्वैप करके ओलंपिक को वहां पे ले आए. मतलब जिन लोगों ने टाइटैनिक को बुक किया था वो ओलंपिक पे सेल कर रहे थे. कैसे? आप लोग बोलोगे कि मतलब निव्या, डू यू रियली थिंक इट मेक सेंस? वेल, सेंस बने या ना बने, थ्योरी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. सो आगे होता है वही. जी हाँ, आगे ओलंपिक जो है वो सेल करने के लिए चला जाता है, लेकिन उससे पहले उसमें कोटिंग होती है, पेंटिंग होती है और अच्छे से उसको नया बनाया जाता है. फिर क्या होता है और क्यों लोग मानते हैं कि पहले से ही पता था लोगों को कि ये जहाज डूबने वाला है? आई एम गोना टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये थ्योरी जो है ना वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब, और आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो कि सराउंड करती है टाइटैनिक, या द लेजेंडरी टाइटैनिक को। मैंने आपको बताया कि कैसे उड़ती उड़ती खबर है और लोगों के बीच में ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं। वेल ऑफ कोर्स नॉट मेनी पीपल नो अबाउट दिस थ्योरी, लेकिन यहां पर जो नहीं जानते इसलिए मैं आपको ये बताने वाली हूं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि टाइटैनिक को जबरदस्ती डुबाया गया, इसके बारे में भी कुछ कहा गया है ना, बहुत सारी चीजें जो है वो कही गई, लेकिन टाइटैनिक टाइटैनिक था ही नहीं, ये अभी तक हमने सुना नहीं था। एंड दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये मिस्ट्री, ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइटैनिक सेल करने वाला था, नया जहाज था, बहुत ही बड़ा जहाज था, ऐसा कहा जाता था कि ये कभी भी नहीं डूब सकता, लेकिन अपनी पहली ही सेल में डूब गया, ग्लेशियर से टकरा के डूबा। That makes sense, but that does not make sense at the same time. जी हाँ, so यहाँ पर ये theory है कि जो owners थे वहां पर, उनके पास दो ऐसे जहाज थे जो कि बहुत ही बड़े थे और जो सेम दिखते थे, एक था पुराना एक था नया। नया वाला था टाइटैनिक, लेकिन पुराना वाला था ओलंपिक। और जैसे मैंने आपको बताया कि सेल करने के लिए बुकिंग्स हुई थी टाइटैनिक में, लेकिन जिसने असली में सेल किया रियल में, वो जहाज टाइटैनिक नहीं बल्कि ओलंपिक था। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका इंश्योरेंस कवर वो चाह रहे थे। जी हाँ, जो ओनर्स थे, जो मेकर्स थे, उन्होंने चाहते थे वो कि उनको उसका इंश्योरेंस कवर मिल सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक और थ्योरी जो कि ये प्रूव करती है कि कहीं ना कहीं पहले ही ये डिसाइडेड था कि ये जहाज डूबने वाला है। जेपी मॉर्गन के बारे में किसने नहीं सुना, राइट? ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो मतलब लेजेंडरी पर्सन, जिन्होंने सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को शुरू किया, एंड इट्स अ बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। सो जेपी मॉर्गन भी इसी टाइटैनिक में सेल करने वाले थे, उसी सेलिंग जो ऐसा कहा जाता है कि वो भी सवार होने वाले थे, लेकिन एन मौके पे उन्होंने मना कर दिया। नोबडी न्यू, किसी को नहीं पता था कि क्यों मना किया गया, क्योंकि ऐसा एज सच कोई रीजन था ही नहीं जेपी मॉर्गन के लिए बैक ऑफ करने का, लेकिन जेपी मॉर्गन ने एंड मौके पे मना कर दिया कि वो इस सेल पे नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे इस जहाज पर। रिजल्ट, जी हाँ, रिजल्ट क्या था? वेल ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग डूबे, जितने भी लोग थे वो डूबे, सिर्फ एक सर्वाइवर था। अब ऐसे में आप लोग सोचोगे कि क्यों इसे डुबाया गया। वेल, जो उस वक्त उस जहाज में सेल कर रहे थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टाइटैनिक अगर ओलंपिक था या ओलंपिक या टाइटैनिक था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ऑफकोर्स ये थियोरी है कि टाइटैनिक ओलंपिक था, टाइटैनिक ने कभी सेल नहीं किया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक जो है या फिर ओलंपिक जो है, उसमें जितने भी लोग सवार थे उनमें बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां थी फाइनेंशियल वर्ल्ड से, और उस वक्त फाइनेंशियल वर्ल्ड को जो लीड कर रहे थे लोग, वो सब वहां पर मौजूद थे। ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई जेपी मॉर्गन वाज आल्सो अबाउट टू सेल इन दैट शिप, बट उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाकी सारे लोग वो तो गए। अब ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक रॉक और ये जो बड़ी डीप स्टेट यू नो फैमिलीज हैं, ये कंट्रोल करना चाहती थी उस वक्त फाइनेंशियल वर्ल्ड को, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ऑनर्स को मिल जाएगा उनका ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कवर, और हमें मिल जाएगा फाइनेंशियल वर्ल्ड, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स जो लीड कर रहे थे उस वक्त फाइनेंशियल वर्ल्ड को, वो सब उस पर सवार थे। अब सब मर जाते हैं एक ही साथ, तो उसके बाद फाइनेंशियल वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाना बहुत ही आसान था। सिर्फ और सिर्फ जेपी मॉर्गन ही इकलौते वो व्यक्ति थे जो उस वक्त भी लीड कर रहे थे और वो आज भी लीड कर रहे हैं, उनका इंस्टीट्यूट आज भी लीड कर रहा है फाइनेंशियल वर्ल्ड को। लेकिन ये कहानी ऐसे ही इतनी ज्यादा मिस्टीरियस नहीं है, मतलब लोगों ने टाइटैनिक को जबरदस्ती डुबाया वो एक थ्योरी है, लेकिन टाइटैनिक था ही नहीं, टाइटैनिक दूसरा जहाज जो कि उसका एक और भाई रख लो या दूर का रिश्तेदार ओलंपिक, वो था, और उसमें भी लोगों को, कुछ लोगों को पहले ही पता था कि ये जहाज डूबने वाला है। क्या ये इंश्योरेंस के लिए हुआ? क्या ये षड्यंत्र डीप स्टेट फैमिलीज की तरफ से हुआ? वी डोंट नो, बट थियोरीज हैं, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू लेट यू नो। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब एक फरमाइशी गीत यहाँ पर प्ले करने का वक्त हो गया है। जी हाँ, फरमाइशी गीत है और गीत जो आया है ये फरमाइशी, वो आया है हमारी बहुत ही खास लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से। और उन्होंने जिस गाने की है फरमाइश, उन्होंने पहले कह दिया था कि निव्या शर्मा आज है तो फ्राइडे का दिन, लेकिन गाना मैं कर रही हूँ एक सेंटी वाला फरमाइश, और वो खुद भी हंस रही थी ये बोल के। सो ऑफकोर्स मजेदार होने वाला ये गाना, थोड़ा सेंटी होने वाला, लेकिन मैंने भी कहा कि ठीक है भेजिए भेजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ये वाला गाना भी हमारे इस फ्राइडे के मूड को चेंज करने का दम रखता है तो हम देख लेंगे इसको भी। जी हाँ, मतलब सेंटी गाना भी हमें सेंटी नहीं कर सकता। आज फ्राइडे है तो सेंटी गाना भी अच्छा लगेगा क्योंकि आज है फ्राइडे भाई। सो मैंने कहा कि हाँ हाँ बढ़िया है, एकदम सेंटी गाना प्ले करेंगे, लेकिन फिर भी मेरे लिसनर्स आज सेंटी नहीं होंगे। थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा की तरह खूबसूरत एलिमेंट लेकर आने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में। अपनी फरमाइशों के साथ ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और ये रहा आपका ये खूबसूरत का सा गाना जिसका नाम है मेरे टूटे हुए दिल से कोई। तो चलिए आगे की बात इन्हीं से जान लेते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आरसी के साथ अब चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। क्या हो रहा है न्यूज वर्ल्ड में, क्या हो रहा है पॉलिटिकल वर्ल्ड में और क्या हो रहा है दुनिया में, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और साथ में शी जिनपिंग की, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ने भी अब शी जिनपिंग के बाद ये कहा है कि क्यूबा पे जो भी कर रही है अमेरिकी सरकार वो गलत कर रही है। जी हाँ, चीन के बाद अब रूस ने भी क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर हत्या का मुकदमा चलाने के अमेरिकी फैसले की आलोचना की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने गुरुवार को रूसी सरकारी मीडिया से कहा कि रूस के लंबे समय से सहयोगी रहे क्यूबा के खिलाफ अमेरिका का दबाव अभियान, जिसमें कास्त्रो पर मुकदमा भी शामिल है, स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं और हम मानते हैं कि किसी भी हालात में ऐसे तरीकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो हिंसा की सीमा तक पहुंचते हों, चाहे मामला किसी पूर्व या मौजूदा राष्ट्र प्रमुख का ही क्यों ना हो। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा था कि अमेरिका को हर बात पर बल प्रयोग की धमकी देना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि चीन क्यूबा के समर्थन में मजबूती से खड़ा है।

0: फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। वहीं दिल्ली से खबर, जी हाँ, भारत की खबर। दिल्ली एयर इंडिया के विमान के इंजन में आग के बाद सुरक्षित लैंडिंग। बेंगलुरु से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2802 ने गुरुवार शाम इंजन में आग लगने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। इस विमान में 160 यात्री सवार थे। एयर इंडिया ने इस घटना पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में विमान की अंतिम लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान कॉकपिट क्रू को एक इंजन में आग लगने का संकेत मिला। बाद में ये संकेत सही पाए गए। क्रू ने सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया और विमान को सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा। सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं और सामान्य तरीके से विमान से बाहर निकल गए हैं। एयर इंडिया ने इस घटना की जांच तुरंत शुरू करने की बात कही है। ये जांच संबंधित नियामक अधिकारियों के साथ मिलकर की जाएगी।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप रोस्टिंग सेशन इज हियर। जी हाँ, ये इंसान जब भी मुंह खोलता है कुछ खतरनाक अपने मुंह से निकालता है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 51st स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला को। जी हाँ, पहले वेनेजुएला के लीडर को उठाया, लिटरली किडनैप किया, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया, और उसके बाद उनको बोला कि उनका सारा ऑयल सीधा अमेरिका आएगा। और अब कह रहे हैं कि ओके, जब इतना कुछ हो ही रहा है तो क्यों ना 51st स्टेट ही बना दिया जाए वेनेजुएला को अमेरिका की। जी हाँ, और ये तो साइन दिए गए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? वेल, अमेरिका को फायदा होगा लेकिन नुकसान भी होगा, क्योंकि वेनेजुएला के सब लोग अमेरिकन सिटीजन्स बन जाएंगे। एंड वेनेजुएला इज नॉट एग्जैक्टली अ पीसफुल कंट्री, और वो सारा का सारा बवाल अमेरिका में आ जाएगा। आप लोग बोलोगे कि या अमेरिका को है बवाल की जरूरत। वेल, हमें ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो बुरे नहीं है, लीडर्स बुरे हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताती हूँ, जो ट्रंप ने कही है, बिकॉज इट्स ट्रंप रोस्टिंग सेशन, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है इसराइल में नेतन्याहू के साथ जो हो रहा है, इसराइली गवर्नमेंट कर रही है, वो अच्छा नहीं कर रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। और फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि यू नो वट, आई एम वेरी पॉपुलर देयर, यू नो वट, जब मैं अपना यहां से कार्यभार खत्म करूंगा तो आई कैन लिटरली रन फॉर प्राइम मिनिस्टर इन इसराइल। अब आप लोग बोलोगे कि बेंजामिन नेतन्याहू देख रहा होगा साइड से कि ये बंदा जो है अब हर जगह मुंह मारने के बाद इसे मेरी कुर्सी भी खाने की पड़ी हुई है। लिटरली ट्रंप जो है वो बड़े ही फनी तरीके से बोलते हैं, यू नो व्हाट, आई एम वेरी पॉपुलर इन इसराइल, मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसराइल में बहुत पसंद किया जा रहा है, मतलब इतना पसंद किया जा रहा है कि आई कैन लिटरली बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए रन कर सकता हूँ इसराइल में। इसराइली लोग भी सोच रहे होंगे ये बवाल, ये कमाल, और ये सवाल अमेरिका में ही रहे तो बढ़िया रहेगा, हमारे यहां तो नहीं आए। ऑल्दो इसराइल की अपनी ही सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि नेतन्याहू जो है वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं। एक और चीज ट्रंप जो कहते हैं, आपको पता है मेरे को लगता है मेरे को अपने बेटे की शादी में जाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। आप जी हाँ, ये उन्होंने कहा है प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कि मेरे को लगता है ना मुझे अपने बेटे की शादी अटेंड करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे कितना काम करना पड़ रहा है, ईरान के साथ हमारी शांति वार्ता चल रही है, कितना काम मैं कर रहा हूँ। वेल, असली काम तो तुमने तभी कर दिया था जब तुमने अटैक किया था ईरान को, अब बाकी के काम तुम मत करो, बरखुरदार तुम बाकी के काम मत करो, क्योंकि तुम्हारे काम की वजह से पूरी दुनिया का काम बढ़ गया है। जी हाँ, फ्राइडे फ्राइडे नहीं फील हो रहा है, ग्रोसरी ग्रोसरी नहीं फील हो रही है, और तेल यानी कि ऑयल तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पूंछ में आग लगाने जितना इन्फ्लेशन की कगार पर पहुंच गया है। सो मैं ये कहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त कुछ नहीं करना चाहिए, ऑल ही नीड्स टू डू इज कहीं जाके भगवान अल्लाह या फिर गॉड से प्रार्थना करनी चाहिए कि ओके ठीक है, मेरे इससे दूर रखो, मतलब मुझे दूर रखो इस पूरी दुनिया से, ताकि इस दुनिया का कल्याण हो सके। जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
11: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
10: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
11: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
10: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
12: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
13: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
12: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
13: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
12: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
13: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
14: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
15: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
16: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है. इसे हम बिन कॉइन कहते हैं. अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें, या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें. आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में. अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें.
17: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं इवनिंग वाइब. जी हाँ, प्रोग्राम इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्च निविया के साथ. और ये जबरदस्त सा प्रोग्राम आपको हंसाने, आपको इन्फॉर्मेशन देने और आपको बहुत ही खूबसूरत गाने सुनाने के लिए हमेशा रेडी रहता है. मैं भी रेडी रहती हूँ. सो नाउ इट्स डे 3 ऑफ गिविंग यू मैरिज लाइफ विजडम विदाउट मी बींग मैरिड. जी हाँ, सो ऑफकोर्स मैं आपके लिए एक और बहुत ही पते की इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ. और अगेन ये मेरे मेल लिसनर्स के लिए ज्यादा है और फीमेल्स जो है स्किप कर सकती हैं. सो यहां पर क्या मैं आपको बताने वाली हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको अच्छे से अपनी वाइफ को हैप्पी और अपनी लाइफ को हैप्पी रखने में हेल्प करेगा. सो यहां पर कहा गया है कि मैच्योरिंग इन मैरिज इज अंडरस्टैंड व्हेन योर वाइफ सेज व्हाट, इट्स नॉट बिकॉज शी डिडंट हियर यू, शी इज गिविंग यू अ चांस टू चेंज व्हाट यू जस्ट सेड. जी हाँ, सो अगेन, कभी भी आप कुछ बोलो और आपकी वाइफ सामने से बोले व्हाट, तो आपको नहीं कहा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है फिर से, जो आपने बोला वो फिर से बोलने के लिए नहीं कहा जा रहा है. आपको अपनी सिचुएशन और अपना सेंटेंस चेंज करने के लिए और सोच समझ कर बोलने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है. जी हाँ, सो ये है मैरिज लाइफ विजडम अगेन विदाउट मी बीइंग नॉट मैरिड. जी हाँ, मैं तो शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको विजडम पूरा पूरा दे रही हूँ. जी हाँ, यहाँ पर अपनी वाइफ को हैप्पी रखिए, अपनी लाइफ को हैप्पी रखिए, ये सब फॉलो करते रहेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वाइफ हैप्पी रहने वाली है. I'm telling you. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है. और अगेन ये गाना जो है वो मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट गानों में से एक है.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ जाने का, विच इज ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पुराने गाने, खूबसूरत किस्से और वो यादें जो उन सितारों ने खुद अपनी जुबानी शेयर की. जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपकी पुराने गानों से रिलेटेड कोई भी फरमाइश है, दिस इज द परफेक्ट टाइम. और जब आप ये कर दोगे तो हमारा प्रोग्राम भी एकदम खूबसूरत हो जाएगा, इसमें भी चार चांद लग जाएंगे. मैं कहती हूँ आसमान में इतने चांद तारे नहीं है जितने कि आपकी फरमाइशों की वजह से हमारे प्रोग्राम में लग जाते हैं. जी आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा इतना शहद मत लगाओ, इतना वो मत लगाओ, मतलब ठीक है हमको पता है हमारी फरमाइशें अच्छी हैं, लेकिन इतनी अच्छी हैं कि चांद सितारों से कर दिया तुमने हमारा कंपैरिजन. वेल ऑफ कोर्स यू डिजर्व दैट. जी हाँ, यहाँ पर इसी के साथ करते हैं इस सेगमेंट की शुरुआत विदाउट देर किए हुए. ये खूबसूरत सा गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है तेरे लिए पलकों की झालर. जी हाँ, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें.

जी हाँ दोस्तों, मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ये जो बड़े बड़े स्टार्स हुआ करते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे, कभी कभी तो ये अपने सिद्धांतों के साथ जो है वो समझौता कर लेते थे, लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। लता जी का नाम इसमें बहुत ऊपर आता है। ऐसा कहा जाता है कि लता जी ने कभी भी कोई भी वल्गर गाना गाया ही नहीं। अगर कोई भी वल्गर गाना उनके सामने आता था, कोई उनको गाने के लिए कहता था, वो सीधा मना कर देती थी। लेकिन जो बात शायद आपको ना पता हो वो ये है कि रफी साहब भी ऐसे ही थे। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि 1960 के दशक में और उसके बाद एक दो बार ऐसा हुआ जब रफी साहब को एक गाना गाने के लिए बुलाया गया और रफी साहब को पता नहीं था तब तक कि मैं एग्जैक्टली क्या गाने के लिए जा रहा हूँ। जब वो गए और उन्होंने गाने के बोल सुने तो उन्होंने देखा कि ये तो गाना कुछ अजीबो गरीब है। उन्होंने उस गाने को गाने से पूरी तरह से मना कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो मेकर्स थे और जो स्टूडियो में लोग बैठे हुए थे वो उनकी फीस बढ़ाने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपको जितने पैसे चाहिए होंगे हम उतने देने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये वो दौर था जब रफी साहब के गानों से ही मूवीज चला करती थी। अब ऐसे में रफी साहब ने गाना गाने से मना कर दिया तो मूवी चलेगी कैसे। अगेन, जैसे मैंने कहा कि मेकर्स ने पूरी पूरी कोशिश की कि रफी साहब की फीस बढ़ाई जाए और उनको थोड़ा सा आकर्षित करने की कोशिश की जाए, बट रफी साहब ने साफ साफ मना कर दिया। और उन्होंने साथ में एक और चीज कही, कहते मैं वो कोई भी गाना नहीं गाऊंगा जो कि इंसान अपने परिवार के साथ बैठ कर ना सुन सके। जी हाँ, इंसान अपने परिवार के साथ बैठकर जो ना सुन सके वो गाना मैं कभी भी नहीं गाऊंगा। तुम चाहे कितने भी पैसे दे दो, मैं इस गाने को नहीं गाऊंगा। एंड दैट वाज द रीजन रफी साहब के गानों के साथ साथ उनकी शख्सियत को भी बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे लोग। ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, उन्होंने बहुत सारी हेल्प की है, बहुत ज्यादा हेल्प की है लोगों की। लेकिन सिद्धांत कि मैं कुछ टाइप के गाने बिल्कुल नहीं गाऊंगा, ये बहुत बहुत बहुत कुछ बताता है उनके बारे में। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फिजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूँ निव्या शर्मा और यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट उस प्रोग्राम का चल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि प्लेबैक सिंगिंग टर्म एग्जैक्टली कहाँ से आया और उसको क्रेडिट मिलना कब से शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं कि बहुत वक्त तक प्लेबैक सिंगर्स टर्म ही नहीं होती थी, मतलब देयर वॉज नो टर्म एज कॉल्ड प्लेबैक सिंगिंग। प्लेबैक सिंगिंग नाम की कोई टर्म नहीं होती थी और ना ही क्रेडिट दिया जाता था सिंगर्स को। इनफैक्ट ये किस्सा खुद आशा जी ने सुनाया है। जी, आशा जी एक बहुत ही गड़े कार्यक्रम में पहुंचती हैं और वो बताती हैं कि ये जितने भी प्लेबैक सिंगर्स हैं उनको शुक्रिया करना चाहिए दीदी का, यानी कि लता जी का, क्योंकि अगर वो नहीं होती और वो नहीं बोलती तो प्लेबैक सिंगिंग नाम की कोई टर्म ही नहीं होती। जिस वक्त उन्होंने काम करना शुरू किया उस वक्त उनकी फोटो नहीं होती थी रिकॉर्डिंग पर, ना ही सिंगर का नाम होता था रिकॉर्डिंग पर। जी हाँ, ऐसा कहा जाता था कि रिकॉर्डिंग के नाम पर वो लिख देते थे किसी एक्ट्रेस का नाम और वहां पर किसी को पता ही नहीं होता था कि एग्जैक्टली सिंगर कौन है, गाया किसने है इस गाने को, बस एक्ट्रेस का नाम होता था। तो लता जी ने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, यहां पर आपको ये चेंज करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग के ऊपर सिंगर का नाम आना चाहिए, प्लेबैक सिंगर का नाम आना चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर से भी पहले आना चाहिए। अब जब उन्होंने ऐसा बोला तो प्रोड्यूसर्स ने बहुत धमाल कर दिया, मतलब प्रोड्यूसर्स को लगा कि ये कैसे डिमांड है, ऐसे तो कभी होता ही नहीं है, ये क्यों करें हम। जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर को जाना जाता है, डायरेक्टर को जाना जाता है, एक्टर को जाना जाता है, ये सिंगर को जानने की क्या जरूरत है। लेकिन लता जी ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं गाना नहीं गाऊंगी। जी हाँ, उन्होंने अपने ही अंदाज में, जैसे वो हमेशा बात करती हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं नहीं गाऊंगी, उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने सीधा गाने से मना कर दिया। लेकिन बात वहां पर अड़ गई क्योंकि वो इंडिस्पेंसेबल हुआ करती थी। जी हाँ, लता जी को लिटरली चेंज करना, ये रिप्लेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब उनसे अगर गाना गवाना है तो ये चीज करनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हेन इट ऑल स्टार्टेड। रिकॉर्डिंग पर सिंगर का नाम एज अ प्लेबैक सिंगर लिखा जाने लगा। जी हाँ, उससे पहले सिंगर्स के नाम ही नहीं होते थे। जी हाँ, सो ऐसे में जब आशा जी ने कहा कि यहां पर हम सब को प्लेबैक सिंगिंग जो ये टर्म आई है वो लता दीदी की वजह से आई है, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं तो मैं भी यहां नहीं होती, लता दीदी भी यहां नहीं होती और जितने भी सिंगर्स हैं वो भी यहां नहीं होते। जी हाँ, यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, अगेन लता जी का ही।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। आई होप आपने हमारे प्रोग्राम को एंजॉय किया हो, और आपकी फीडबैक तो हमेशा वेलकम है। फीडबैक हमें देते रहिए, कैसा लगा आपको प्रोग्राम, कैसा लगता है। और यहाँ पर आज है फ्राइडे, तो मस्ती करने का पूरा टाइम आ गया है, पार्टी करने का पूरा पूरा टाइम आ गया है, एंजॉय करने का पूरा पूरा टाइम आ गया है, और अपने आप को एकदम रिजुविनेट करने का पूरा पूरा टाइम आ गया है। सो मैं चाहती हूँ कि ये फ्राइडे आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। मजे कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग भी आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत ही खूबसूरत और माय पर्सनल फेवरेट ऑल्सो। सो या थैंक यू सो मच, बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं अब आपसे कल टॉप 10 हॉट 10 में, और इवनिंग वाइब में मुलाकात होगी मंडे को।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

ना बदला में।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोच कर पिछला और अगला

0: लंगोट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन ब्रोंकस के स्टार खिलाड़ी शिवासाकी

जीवन से पढ़ाई और नौकरी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया में वीजा रिफ्यूजल छात्रों और परिवारों के लिए एक बड़ा झटका होता है, लेकिन आज ब्रिस्बेन की एक लीडिंग कंसल्टेंसी एजुकेशन एम्बेसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्रिब्यूनल में कई बेहद मुश्किल वीजा अपील्स जीतकर उन लोगों को बड़ी राहत दी है। वहीं ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी। कनाडा में इबोला वायरस से जुड़ी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आज सुबह से सतर्कता बढ़ा दी गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों, खासकर अफ्रीकी देशों से कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए आने वाले पैसेंजर्स की कड़ी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। वहीं ब्रिस्बेन के लोकल मार्केट्स में महंगाई को लेकर नई रिपोर्ट। क्वींसलैंड सरकार की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते ब्रिस्बेन के लोकल मार्केट्स में ग्रोसरी और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के साथ ब्रिस्बेन में वीकेंड वेदर अपडेट। सुहावना रहेगा मौसम अगर आप ब्रिस्बेन में रहते हैं और वीकेंड पर बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मौसम विभाग से अच्छी खबर है। आज दोपहर जारी किए एक गए बुलेटिन के मुताबिक इस शनिवार और रविवार को ब्रिस्बेन और उसके आसपास के इलाकों में मौसम पूरी तरह साफ और सुहावना रहेगा। वहीं ब्रिस्बेन की सड़कों पर ट्रैफिक सुधार के लिए नया रूट प्लान लागू। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने शहर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के इलाकों में लगने वाले ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए आज से एक नया रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली में भारत और साइप्रस के बीच बड़ी द्विपक्षीय बैठक। जी हां, आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडलाडिस के बीच एक बड़ी अहम बैठक चल रही है। वहीं देश में 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख घोषित। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज सुबह ही देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। वहीं तेलंगाना के 11 जिलों में भीषण हीट वेव का अलर्ट। गर्मियों ने देश में अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ पंजाब में सफाई कर्मचारियों ने खत्म की अपनी हड़ताल। पंजाब से एक बड़ी राहत की खबर है। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे राज्य भर के सफाई कर्मचारियों ने आज आखिरकार अपनी हड़ताल वापस ले ली है। वहीं क्रूड ऑयल सप्लाई चेन को लेकर सरकार हुई अलर्ट। पश्चिम एशिया यानी कि वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश की बड़ी कंपनियों से पूछा कि क्या पेट्रोल और डीजल से जुड़े करीब 200 केमिकल और प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन भारत में ही लोकल लेवल पर बढ़ाना मुमकिन है या नहीं। इसी के साथ केरल के शख्स के लिए 34 करोड़ का क्राउड फंडिंग अभियान सफल। सऊदी अरब की जेल में मौत की सजा काट रहे केरल के एक आम नागरिक को बचाने के लिए भारत में मानवता की बड़ी मिसाल देखी गई। ब्लड मनी यानी कि जुर्माना चुकाने के लिए देश भर के लोगों ने मिलकर 34 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले शिपिंग व्यापार पर किसी भी तरह का टैक्स लगाने का विरोध करता है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहुंचे स्वीडन। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज स्वीडन में होने वाली नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। वहीं 11 देशों ने इजरायली राजदूतों को किया तलब। गाजा में राहत काम कर रहे एक्टिविस्टों के साथ हुए दुर्व्यवहार के एक सोशल मीडिया वीडियो पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया है। इसके साथ गाजा में चूहों और पैरासाइट्स की वजह से स्किन इन्फेक्शन का खतरा। यूनाइटेड नेशंस की पैलेस्टाइन एजेंसी ने आज एक डराने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरुआती 5 महीनों में गाजा में गंदगी, चूहों और पैरासाइट्स की वजह से स्किन इन्फेक्शन के 1,25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं कांगो से उड़ाने भरने वाली फ्लाइट में बड़ी चूक, कनाडा में इमरजेंसी लैंडिंग। अफ्रीका के
कांगो से उड़ान भरने वाले

0: एक पैसेंजर विमान को आज अचानक कनाडा की तरफ मोड़कर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक कांगो में फैले इबोला वायरस के खतरे के बीच एक यात्री गलती से इस फ्लाइट में सवार हो गया था। वहीं होंडुरास में दो अलग अलग हमलों में 16 लोगों की मौत। सेंट्रल अमेरिका के देश होंडुरास से एक दुखद खबर आ रही है। वहां के तटीय इलाकों में बंदूकधारियों ने दो अलग अलग जगहों पर हमला करके ग्रामीण मजदूरों और पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले स्वीटी कुजूर बनी भारतीय महिला अंडर 18 हॉकी टीम की कप्तान। हॉकी इंडिया ने आज जापान में होने वाले आगामी अंडर 18 महिला एशिया कप के लिए 18 सदस्यों वाली भारतीय टीम का ऐलान किया। वहीं पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसेकर सिलेक्टर्स पर भड़के। अकीब नबी को ना चुनने जाने पर सवाल उठाया। अगले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इकलौते टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वहीं आईपीएल 2026 मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर लगा जुर्माना। आईपीएल के मौजूदा सीजन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर कल रात मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उन पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं स्टेट ऑफ ऑरिजिन सीरीज के लिए क्वींसलैंड टीम का ऐलान। रग्बी की दुनिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक सीरीज स्टेट ऑफ ऑरिजिन के पहले मैच के लिए क्वींसलैंड टीम की घोषणा हो गई है। कोच बिली स्लेटर ने सिडनी में बुधवार को होने वाले इस मुकाबले के लिए अपनी 6 सदस्यीय बेंच की लिस्ट जारी कर दी। वहीं एनआरएल में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हलचल तेज। नेशनल रग्बी लीग में खिलाड़ियों की अदला बदली और नए कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर आज बड़ी खबरें आ रही हैं। न्यूजीलैंड वॉरियर्स ने टना बायर्ड के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया है। वहीं कई बड़े खिलाड़ी चोट से उबर कर टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: Hi, this is Amitabh Bachchan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Salman Khan.
8: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
11: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani पे।
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
13: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
14: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
15: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
14: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
7: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
14: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 0411270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 0411270035। रिमेम्बर द नंबर इज 0411270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी फॉर द बायर हु अंडरस्टैंड्स।

0: means that the number you carry is a statement of who you are. Qplate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: Na tere varga aashiq vekhya, na tere vargi aashiqui.
2: ARY Films and Salman Iqbal present Love These Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love These Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
4: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
3: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
4: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
5: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
6: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
5: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
6: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
5: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वन एम ते चार छे संदेश अलग दिन आल तुसी बने हुए। इस लिस्ट दे विच अगला नाम जेड़ा हैगा है बिग बी सदी महानायक, जी हाँ अमिताभ बच्चन दा हैगा। अमिताभ बच्चन दे नाल केड़ी फिल्म दे विच होया सी, वो है जी कुली। कुली दा किस्सा सुनानी है। अमिताभ बच्चन दे नाल फिल्म कुली दी कुली दी शूटिंग दे दौरान जो हादसा होया सी उस नाल तो सब वाकिफ है कि नहीं। पुनीत इस पर दे शूटिंग दे दौरान उन्होंने तेजी नाल 5 वार मार दिता सी। इस तो बाद अमिताभ नूं अस्पताल विच भर्ती करवाना पिया सी ते 59 दिन यानी कि 60 तो 21 दिन घट उन्हां दा इलाज चलिया सीगा। 2 महीने तकरीबन उन्हां दा इलाज चलता रहा सी।

जी आयनो जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसर मोरे ते चार छे संदेश अलग दिन आल तुसी बने होए। इस बार अगला नाम नवाब साहब दा आंदा है। नवाब साहब है गने सैफ अली खान। जी हां, सैफ अली खान नुना फिल्म क्या कहना है दे सेट ते एक खतरनाक हादसे दा सामना करना पिया सी। क्या कहना फिल्म ता याद आ गई ना थोनू। बहुत ही सोहनी प्रीटी जिंटा दे नाल फिल्म है, बहुत ही प्यारी ते बहुत ही सोहनी स्टोरी भी है कि है। खतरनाक हादसा होया सी उन्हां दे नाल। एक सीन विच उन्होंने बाइक चलानी सी। इस दौरान सैफ ने बाइक तो कंट्रोल खो दिता सी ते डिगदे डिगदे वो वड्डे पत्थर दे नाल जा टकराया सी। उन्हां दा कुछ महीने तक कंटीन्यूअसली इलाज चलता रहा सी।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
2: Only God can judge me. That right? Only God, baby. Nobody else.
3: They see red tape.
4: Hey, yo, Sean.
5: Atom di khitti at nukh di nak tak mere raha di makama nal. Ho mere raha di makama nal pak thak. Sahaj subah nu rakh.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
3: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
3: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: suku, suku.
1: Ay, ay, ay, करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: सुप्पु सुप्पु
1: अय्या करूं मैं क्या सुप्पु सुप्पु खो गया दिल मेरा सुप्पु सुप्पु।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है।
1: सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
0: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
0: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
0: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

करना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

है रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम

जी मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं। मैं हूं परमानंद। वे है संगीत सरगम नामक कार्यक्रम जो हर शनिवार को हम आपके सेवा में लेकर आते हैं। करीबन इस समय मेरे ख्याल से शायद हमारा जो लेवल है सही नहीं जा रहा है, तो उसको घुमाते हैं, दूसरे माइक से कोशिश करते हैं करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सही आए। तो मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं। मैं हूं परमानंद। वह संगीत सरगम नामक कार्यक्रम। और आज आप जानते हैं, आज है 23 तारीख मई सन 2026। सुबह का बेला है, ब्रिजबन में शनिवार हो चुका है। और आज जो खबर हमें मौसमी दफ्तर ब्रिजबन से प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा। ज्यादातर धूप निकलेगी। यहाँ ब्रिजबन में सुबह 6:25 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:03 पर सूर्यास्त होगा। हवा का रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा अनुमान किया जा रहा है। और आकाश पर घटा थोड़ी बहुत छाई रहेगी, लेकिन ज्यादातर धूप निकलेगी। 24 दिन में रहेगा रात्रि को 17। इप्सविच में धूप निकलेगी 24 दिन में रात्रि को 14। हवा का रफ्तार 18। और सनशाइन कोस्ट में बादल घिरे रहेंगे और ज्यादातर धूप निकलेगी 23 दिन में रात्रि को 18। हवा का रफ्तार 29 और गोल्ड कोस्ट में 24। इसी प्रकार का मौसम रहेगा जिससे सनशाइन कोस्ट में और 18 रात्रि को हवा का रफ्तार 26 रहेगा। ओकलैंड न्यूजीलैंड ले चलते हैं, जहां पर बादल घिरे रहेंगे। 19 रहेगा दिन में रात्रि को 14। 16 हवा का रफ्तार रहेगा और 7:18 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:16 पर सूर्यास्त होगा। वेलिंगटन में ज्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी, 13 दिन में रात्रि को 9। हवा का रफ्तार 21 और नैनी में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी। 29 रहेगा दिन में रात्रि को 26। हवा का रफ्तार 13। 6:30 सूर्य उदय हुआ है, 5:45 सूर्यास्त होगा। लंबासा में हल्की बारिश होगी, 30 दिन में रात्रि को 24। हवा का रफ्तार 11 और सुबह में इसी प्रकार मौसम रहेगा, 28 दिन में रात्रि को 24। हवा का रफ्तार 14 और मुंबई में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी। 33 दिन में रात्रि को 30। हवा का रफ्तार 16। फिर अमृतसर ले चलते, जहां कड़ी धूप निकलेगी, 38 मैक्सिमम, 27 मिनिमम, 13 विंड स्पीड। एंड न्यू दिल्ली 40 भाई दिन में बहुत गर्मी और 28 रात्रि को 23। हवा का रफ्तार 5:27 पर सूर्य उदय होगा, 7:08 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। और संगीत सरगम प्रोग्राम में आप सबका मैं परमानंद हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम भेंट कर रहा हूँ। और आज आप जानते हैं कि शनिवार की सुबह है, प्यारा सा मौसम है। ऐसे प्यारे मौसम में आपको हम याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, ईश्वर आपका कल्याण करे, यही प्रार्थना के साथ आज का जो मंगल प्रभात है शुरू कर रहे हैं। जी कैसा चल रहा भाई? जल्दी जल्दी सुबह हुई, शाम हो गई, रात आई, हफ्ता बीता, मैं फिर आ गया वापस आपके पास। कहते ना, एक प्यार है जो हमें खींच कर आपके पास लाकर जोड़ती है। ये है भाई, यही है। और जीवन में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, और सभी कुछ ठीक ठाक चलना चाहिए। मालिक का नाम लेकर करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो सब सही जाएगा। अमला जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नमस्कार जी, आपका वहाँ तो ठीक है, हमारा तो अभी सुबह हुआ है, ठंड है आज। लेकिन मैं 4:30 उठा हूँ, वैसे तो 4:15 उठ गया था, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद 4:30 बाहर हुआ हूँ। और हमेशा कहते हैं ना, कुछ कार्य करें तो प्रार्थना के साथ करें, ध्यान वगैरह करें और निकलें, और यही कल्पना करके चलें कि आज हम कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के लिए सही करेंगे, और करें भी, एक सुकून मिलेगा आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी बात पर एक बहुत ही मजेदार गीत याद आ गया, जिसे कुमार सानू साहब अलका जी के साथ अदा कर रहे हैं, और ये है लड़की बड़ी है अनजानी सी। क्या बात है, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि महिलाओं का परखना मुश्किल है, लेकिन नहीं, उनका अंदाज अलग होता है, बड़े प्यारे होते हैं। तो चलो सुनते हैं, काजल है पर्दे पर, जी उस

0: जी मित्रों, कुछ कुछ होता है बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे थे
1: और
0: उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए विज्ञापन की तरफ, और विज्ञापन ले लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आप रेडियो ब्रिजबान या आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, मैं हूँ परमानंद, यह है संगीत सरगम नामक कार्यक्रम।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यू बॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: और मित्रों इस समय 18 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। परमानंद के साथ आप हैं, संगीत सरगम नमक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जी हमें कुछ कोशिश कर रहा था, चल रहा है तो चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एक और खबर ले लेते हैं, फिर हम आपके लिए कुछ मजेदार गीत को जो सुनाना शुरू किए हैं वो सुनवाएंगे।
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.in.
2: It's a statement.
0: जी हाँ दोस्तों, विज्ञापन बच गया था और चलें आगे बढ़ते हैं। अब इस समय सबके सही चल रहा है रेडियो ब्रिजबानी के स्टूडियो में, तो हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने अनाउंसर्स हैं, उनको बतला दें कि जतीश पूरन साहब ने बहुत मेहनत कल की है, मैं भी यहाँ उपस्थित था, और जो भी थी तकनीकी कार्य उसको सुधारे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा चलें, तो हमें ध्यान में रखना है क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से यहाँ पर जब आए, जो औजार को हम चला रहे हैं तो बहुत भली भांति से देखें और ध्यान से उसको शुरू करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, क्या बात है, और ये सुपरहिट गीत को उदित नारायण वगैरह गा रहे हैं, तो चलें सुनते हैं इसे, आपके लिए पेशे खिदमत है ये मजेदार।

0: जी मित्रों, कविता कृष्णमूर्ति भी थी इस लोकप्रिय गीत के साथ। चले आगे बढ़ते हैं विज्ञापन की तरफ और विज्ञापन बजाते हैं आपके लिए। रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान, आप सुन रहे हैं परमानंद के साथ संगीत सरगम प्रोग्राम को सुन रहे हैं।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: और मित्रों, इस समय लगभग 9 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और मिले जुले कार्यक्रम में जो संगीत सरगम का कार्यक्रम है पहला सेगमेंट का, आगे बढ़ते हुए चलते हैं कयामत से कयामत तक। अलका जी उदी जी के साथ बहुत ही प्यारा सा गीत अदा कर रही हैं, सुनते हैं।

0: ये मित्रों प्यारा सा गीत था ये आप सुन रहे थे, और आगे बढ़ते हैं चलें एक और गीत के साथ। और अगला जो गीत है बहुत ही प्यारा सा गीत है, फिल्म डुप्लीकेट का गाना है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगे। और ऐसे गाने जल्दी हम नहीं बजाते हैं, लेकिन चलो आज हम इसको बजाते हैं आपके लिए। बहुत दिनों के बाद बजा रहे हैं, लेकिन एक अलग सा वर्जन हम बजाएंगे आपके लिए। और रेडियो ब्रिजबानी आप सुन रहे हैं, स्टूडियो का नंबर है 3279-1701 और मेरा मोबाइल नंबर है 0411-127-035। तो आगे बढ़ते हैं, चलें आगे बढ़ते हुए सुनते हैं इस गीत को।
1: पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
2: वाओ।

0: जी मित्रों, इस गीत को कई लोग अदा कर रहे थे, जावेद और उदित नारायण साथ दे रही थी, अलका याग्निक जी। उम्मीद कर रहा हूँ गीत आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ही साथ बजने वाले हैं और शनिवार के सुबह मैं परमानंद आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ कुछ मिले जुले गीतों का कार्यक्रम को लेकर। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ साफ सुथरा आपको सुनाई दे रहा है और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। कुछ आपको सुनाना है, सुनाने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे।
1: अच्छा, केवल 12 दिन में सरकार बने हुए और जिस तरह से एक के बाद एक,
0: ये नहीं सुनाना था आपको, सुनाना था कुछ और, बच गया कुछ और। भाई क्या बात है, तो चलो सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
1: ये बातें याद रखना, एक अकेले चलना सीखिए क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन साथ छोड़ ही देता है। दूसरा, मुस्कुराना सीखिए क्योंकि ये दुनिया हमें पैदा होते ही रोना सिखा देती है। तीसरा, कर्म पर भरोसा रखो, किस्मत पर नहीं, क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती है। चौथा और सबसे जरूरी, इंसान का सच्चा साथी उसकी सेहत है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो इंसान सबके लिए बोझ बन जाता है। मेरी ये बातें याद रखना एक।
0: तो मित्रों, ये था कुछ लोकप्रिय गीतों का, एंड आपको बतला दें कि बहुत ध्यान से आपने सुने इसको, अच्छा लगा। और आगे बढ़ते हैं, मुझे कुछ और याद आ रहा। मैं अभी जब विश्राम कर रहा था तो कुछ बातें दिमाग में आई मेरी। एक तो ये था कि हम लोगों को देखकर अलग अलग दिमाग में दौड़ाने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं कि क्या ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, यहाँ मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूँ, चाहे एक घास काटने वाला बंदा, एक गार्डनर, या फिर एक जज, वकील, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग मुल्क से मिलते हैं। और मैं बोलता हूँ कि कोई, कभी कभी लोग बोलते हैं तो बेकार आदमी, कोई बेकार नहीं होता है दोस्तों, कोई भी बेकार नहीं होता है। मालिक ने उनको बहुत गुण दिए हैं, वो गुणी लोग हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में उनके पास एक्सपर्टीज है। हर व्यक्ति सबका काम नहीं कर सकता, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग तरह से हम उसे करते हैं। और ईश्वर ने हमें वो बल दिया, तंदुरुस्ती दी है, हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान के अनुसार हम करते हैं। तो जब कभी किसी से मिलें, पहले ये ना सोच लें कि बंदा ऐसा है, क्योंकि जब ऐसे सोचते हैं तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि कभी कभी लोग खामोश रहते, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, लेकिन शायद वो ज्ञान नहीं जो आपके पास है। तो बांट कर हम चलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। जब वार्तालाप करते हैं तो ध्यान से सुने, पॉजिटिव लिसनिंग चाहिए, ध्यान से खूब सुनकर टिप्पणी करनी हो करें, ना हो तो ना करें, बेहतर होगा नहीं है करें। और कभी जाकर मिलें, प्यार से मिलें, किसी से मिलें, मिलें। और जैसे बहुत कुछ होता है यहाँ पर, बहुत लोगों के अलग अलग ज्ञान है, उसे हम सीख सकते हैं। बात करने के बाद अपने आप को, अपना परिचय दिलाएं, बात करें, भाई साहब कैसे हो, या बहन जी हैं तो उनसे बात कर लें, बहन जी कैसे हो, कहाँ रहने वाले हो, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कितने साल हुए, ऐसे से बातें करें, जनरल बातें करें, उनके गुप्त बातें ना पूछें और ना करें। और रुलाना नहीं है किसी को, खुश रखना है, एक सुकून चाहिए जीवन में। और फिर कुछ भी करें, चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हम कहीं भी चले जाएं या गुरुद्वारा साहब चले जाएं, तो बहुत कुछ वहाँ भी सीखने को मिलता है। जब प्रचारक प्रचार कर रहे हैं या कोई भी वहाँ पर कुछ हो रहा है धर्म के बारे में, ध्यान से सुनिए, फोकस रखिए, वहाँ से भी कुछ सीख कर आप लेकर आएंगे, अंदर लेकर आएंगे। वैसे हमारे घट के अंदर भी ज्ञान है, वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि एक बार वो मिल जाए, लेकिन सही गुरु चाहिए। जब गुरु सच्चा है, गुरु अच्छा है, तो गुरु क्रियाएं सिखलाता है। बहुत लोग बोलते हैं आई कांट मेडिटेट। भाई मेडिटेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको कल्पना बतलाया जा रहा है। जब एक गुरु मिलेगा ना, सच्चा गुरु, वो आपको क्रियाएं सिखाएंगे। जब क्रिया सीख लेंगे तब हम ध्यान करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो ये बात याद रखें, कुछ बात आज मैं बोल दिया, क्योंकि मुझे रात को 5-6 बार ये बात आए कि मुझे आपसे शेयर करना है, मैं किया हूँ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ आपको इससे जानकारी मिली होगी। तो चलें, पुराना गीतों के कार्यक्रम अब मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस आशा पारेख जी हैं पर्दे पर, और मनोज कुमार जी का फिल्म है, सिमी भी साथ में, प्राण भी साथ भी हैं। लेकिन हमेशा जब कभी मैं आशा पारेख जी का गीत बजाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो आई ऑलवेज एडमायर उसका पहनावा, हेयर स्टाइल, कितना बढ़िया से वो ड्रेसअप होती थी और बाल कितना सुंदर से बनाती थी। तो चलो सुनते हैं, जब चली ठंडी हवा, ठंडे ना यहाँ हमारे ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए।

जयमित्रो आशा भोसले जी का मधुर आवाज में इस गीत को आप सुन रहे थे। चलें विज्ञापन की तरफ और विज्ञापन के बाद फिर पुराने गीतों को जारी करेंगे। तो चलें दो बजाते हैं आपके लिए। पहला

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438, 3630-5438, your mobile 0415-952-660, 0415-952-660.
3: अब इस समय दोस्तों 10 मिनट हुए हैं।
4: अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो, तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उनां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
3: मित्रो 10 मिनट हुए हैं, इस समय 7:00, एक और गीत फिर राव जी को लेकर हम आएंगे, तो चलें सुनते हैं किशोर कुमार जी का गाया हुआ फिल्म कालिया का जो 1981 मूवी थी उसका है लोकप्रिय गीत।

0: ये मित्रों 1981 मूवी कालिया का लोकप्रिय गीत आप सुन रहे थे और इस समय 7:16 हुए हैं और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें विज्ञापन के तरफ और विज्ञापन के बाद एक और गीत फिर हम राव जी को लेकर आएंगे। आप सुन रहे हैं परमानंद के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम प्रिंस ज्वेलर्स का अगला खबर।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
3: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
4: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
4: गो फॉर द बेस्ट विरे, अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो, ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नो हैंडल करन जी वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस, ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Jai Mitro, badhte hain aage. Aage badhte hue aaj ka jo antim purana geet hai, wo aapko sunwane ja raha hoon. Jabki 18 minute hue hain, 7:00. आजा आई बहार दिल है, लता जी हैं, फिल्म है राजकुमार 1967 का, पर्दे पर शमी कपूर साहब और साथ में साधना जी।

0: जय मित्रों, लते जी का खूबसूरत गीत के साथ साथ हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस समय में देख रहा हूं तो बजे हैं 23 मिनट हुए हैं 7 बजकर और आप संगीत सरगम प्रोग्राम सुन रहे हैं। हर शनिवार की तरह आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं राव जी। राव जी नमस्कार।
1: नमस्कार परमानंद जी,
0: क्या हाल है आपका ठंड का मौसम में?
1: ठंड का मौसम तो सूर्य में सभी जगह से ज्यादा दिख पड़ता है और आज दिन में हवा की तो रफ्तार भी जरूर रहेगा
0: जी।
1: इस पर मैंने आज का शीर्षक लाया हूँ, आहार के 3 प्रकार होते हैं, राजसिक आहार, तामसिक आहार और सात्विक आहार। जिसका जो लगन रहता है वो उसी प्रकार का आहार चुन लेता है। जीवन का भोजन के साथ गहरा संबंध है, इसलिए कहा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न और मन का संबंध गहरा है, दूसरे शब्दों में अन्न और भावों का गहरा संबंध है, इसलिए भोजन संबंधी अनेक वर्जनाएं की गई है। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन आदि का वर्जन करना चाहिए, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए आदि आदि इत्यादि हमारे बीच में लेखक ने लिखा है। योद्धाओं के लिए मांस मदिरा की छूट थी, क्योंकि क्रूर हुए बिना दूसरों का कत्ले आम नहीं करना चाहिए। योद्धा को क्रूर होना होता है, तभी वह अपने शत्रुओं का घास की भांति काट सकता है। उसके लिए तामसिक आहार की उपयोगिता बताई गई है। सात्विक आहार करने वाले के मन में करुणा जाग जाती है, वह दूसरे को मार नहीं सकता। पहले मांस मदिरा का प्रयोग सीमित दायरे में था, पर आज यह समाज व्यापी बन गया है, सभी योद्धा बन गए हैं, सभी योद्धा बन गए हैं। पाचन क्रिया का स्वभाव के साथ संबंध है, पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, पाचन ठीक नहीं होगा तो चयापचय की क्रिया ठीक नहीं रहती है। चयापचय एक शब्द है जो पाचन शक्ति से संबंध रखती है। इसका भावात्मक स्वास्थ्य पर भी बहुत असर होता है। जिस व्यक्ति का पाचन ठीक नहीं है उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है, जिसका पाचन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र स्वास्थ्य नहीं होता हुआ स्वभाव से भी स्वास्थ्य नहीं होता। पाचन तंत्र ठीक नहीं होता तो स्वभाव में विकृतियां आ जाती है। खाते खूब हैं किंतु सफाई होती नहीं है, मल का निष्कासन ठीक प्रकार से नहीं होता, कब्ज रहता है, कोष्ठ बद्धता रहती है, तो सारा स्वभाव गड़बड़ आदि हो जाता है। उदासी, बेचैनी, बुरी कल्पना और बुरे विचार आने लग जाते हैं। हमें जागरूक होना है इन दो तंत्रों के प्रति, पाचन तंत्र के प्रति और उत्सर्जन तंत्र के प्रति। जो लोग इसमें जागरूक नहीं होते उनका दिमाग भी ठीक काम नहीं करता, स्मृति भी ठीक काम नहीं करती। स्मृति यानी सोचनीय की शक्ति दोष और उत्सर्जन तंत्र में बहुत गहरा संबंध है। प्रसन्नता से भी उसका गहरा संबंध है। हमारा जितना ध्यान खाने पर केंद्रित है उतना उत्सर्जन पर केंद्रित नहीं होता। होना तो यह चाहिए कि खाने की अपेक्षा उत्सर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित है। ऐसा होगा तो भाव शुद्धि भी रहेगी, विचार शुद्धि भी रहेगी, बुरे विचार से बुरी कल्पना और बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे। ये थी एक छोटी मनोदशा कैसे हम बदले। तो परमानंद जी,
0: जी हाँ राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और शनिवार को मिलते हैं। नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: तो मित्रों, ये थे राव जी और उनके साथ हम कुछ वार्तालाप कर रहे थे और हम आगे बढ़ते हैं, जबकि 7:30 बजे हैं रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में। तो आज जिनका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, उन्हें हम याद कर रहे हैं। हमारे तरफ से, रेडियो ब्रिजबानी की तरफ से, हमारे श्रोता की तरफ से आपके जीवन में बहुत खूबसूरत दिन आए। आज का दिन खास तौर से, अगर आप जन्मदिन, वैसे तो मैं सोचता हूँ जन्मदिन हर दिन होना चाहिए और शादी की सालगिरह हर दिन होनी चाहिए, ताकि रिश्ता घनिष्ठ रहे, प्यार रहे और खुशी खुशी अपना जीवन को हम एक सुकून के साथ बिता सकें। तो हमारे तरफ से बहुत सारी दुआ आशीर्वाद है आपको और मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और खास तौर से जो लोग शायद अपने सफर में कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, देश विदेश जा रहे हैं, मालिक से प्रार्थना कर रहा हूं कि उनकी यात्रा सफल हो, खुशी खुशी जाएं, खुशी खुशी आएं, बगैर कोई बाधा विघ्न के अपना जो यात्रा उसे पूरा करें। और जो लोग हमारे इंटर स्टेट से और या देश विदेश से ब्रिस्बेन आए घूमने के लिए, उनको भाई हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं अपने शहर में। इतना बढ़िया सा कंट्री और शहर आपको नहीं मिलेगा, बड़े प्यारे लोग यहाँ रहते हैं, मौसम बहुत प्यारा होता है, अभी थोड़ा ठंड है, अन्यथा 9 महीने तो बहुत खूबसूरत मौसम होता है। तो आपका स्वागत है राणा साहब, अल्लाह हाफिज, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए 2 विज्ञापन लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ और गीतों को सुनवाएंगे, कोई नए गीतों की तरफ हम चलेंगे।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ, फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर। Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: और ये प्रसारण आप 1701 AM के माध्यम से 17 माइल रोड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से सुन रहे हैं। हमारे यहाँ 27 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और ऑनलाइन आप सुन सकते हैं brisbane.com पे जाकर, गाड़ी में सुन सकते हैं 1701 AM डायल घुमाएं, पहुंचेगा वहां पर या सर्च करें। और साथ में जिनके घर में रेडियो है, रेडियो के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। तो कई तरह है और कई बोले मीडियम है जिसके द्वारा एक प्रोग्राम को सुन सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब आया उस समय जबकि कुछ रोमांटिक गाने, कॉमेडी भरे गाने, ऐसे ऐसे गीत हम आपको सुनाएंगे। तो कुमार सानू साहब आ रहे हैं अलका याग्निक जी के साथ, जोरू का गुलाम फिल्म का नाम है, और खुला है मेरा पिंजरा।

0: ये मित्रों बहुत बढ़िया गीत था और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। रेडियो ब्रिजबानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। चलें, दो विज्ञापन बजाना है मेरे को, तो पहला एक खबर।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: और मित्रों, विज्ञापन के बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि फूलों में खुशबू है और इस दिल में तुम हो, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। क्या बात है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक गीत जो बहुत मशहूर हुआ अपने समय में, जिसे दलेर मेहंदी साहब, अलका याग्निक जी के साथ अदा किए थे, पिक्चर सनी डोयल और जूही चावला जी का था, अर्जुन पंडित भी थी उसमें। तो चलें सुनते हैं। सिंह साहब, अभय सिंह जी, आपके लिए विशेष तौर से इस गीत को मैं बजा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं तड़के सुबह से। तो चलो आपके साथ, बहुत हमारे श्रोतागण हैं जो एक गीत को बेहद पसंद किए थे अपने समय में, आज भी पसंद करते हैं।

0: ये मित्र 14 मिनट रह गए हैं इस समय 8 बजने में, और एक गीत के साथ साथ क्या बात है, शायद आप खाट छोड़ चुके होंगे या फिर जो भी कर रहे हैं एंजॉय कर रहे होंगे अपना समय को। चलें खबर आगे बढ़ाते हैं।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, caring with dignity।
0: अब इस समय 13 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। एक नया गाना है, लेटेस्ट पार्टी हिट, जिसे जिसके बोल हैं ढोल की रात। अभी रात तो नहीं हुई है हमारे यहाँ, लेकिन रात को कहीं सगाई वगैरह होगा, फंक्शंस वगैरह होंगे, पार्टी वगैरह होगी, तो ऐसे गाने बजेंगे।

0: जी हाँ, ढोल की रात आप सुन रहे थे और इसी के साथ ही घड़ी की तरफ देख रहा हूँ तो भाई 9 मिनट रह गए हैं इस समय 8 बजने में। आपको याद दिला दें कि 8 बजे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आपके लिए हम लेकर आएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें खबर ले लेते हैं। खबर के बाद फिर कुछ हम और आपको सुनाएंगे, चलें खबर के साथ। और एक खबर है जी हाँ ब्रिस्बानी का है, तो चला सुनते हैं इसे।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
12: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
11: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
12: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
11: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: और मित्रों आगे बढ़े हैं, हम आगे बढ़ते हुए कुछ नए गाने आप सुन रहे हैं। ये भी 2026 का खूबसूरत गीत है, लाल चुनरिया।

जी मित्रों, नया सॉन्ग था और आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए एक और गीत का समय है। रानी क्रिएशंस के प्रोग्राम से पहले उसे हम बजा देते हैं। दिल तेरा हो गया गीत के बोल हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आए।

0: मित्रों, कभी कभी हम गीत सुनते हैं, उनमें बहुत सारी बातें होती हैं जो जीवन में हमें उतारना चाहिए, उसी राह पे चलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो बोलते हैं क्या हम उसे निभाते हैं? शायद नहीं निभाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ऐसे गीत बजा देते हैं कि आपको कुछ याद दिला दे कि जो हम कहते हैं उसे पूरा भी करें। तो आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजबानी, आपकी अपनी पहचान। एक और खबर ले लेते हैं पीवा देसी घी का।
1: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: जय मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, जिसका प्रसारण हम 1700 AM के माध्यम से 7 माइल रोक्स ब्रिजबन ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। शनिवार का सुबह है, 23 तारीख मई है, खूबसूरत मौसम तो है ही लेकिन थोड़ी ठंड है। खाट पे लेटे लेटे आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब समय हुआ रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया का।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Rani Creations, आपका स्वागत कर रही है इस 15 मिनट के प्रोग्राम में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम भेंट कर रही है। और याद रहे कि भाई फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और एंड होने वाला है, तो 30 तारीख जून को एंड होगा। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए रानी क्रिएशंस ने निर्णय लिए हैं कि भाई यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेल, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल का शुरुआत कर रहे हैं आज से। और जो भी आप लेंगे इनमें बहुत सारे चीज कंबाइन आपको मिलेंगे, पैकेज मिलेगा, साड़ी विद ब्लाउज एंड ज्वेलरी, मर्दों के लिए भी सभी कुछ पोशाक अवेलेबल हैं, उनको जो भी तरह के कपड़े पहनना है, इंडो वेस्टर्न कपड़े भी हैं, सूट जो हैं और कुर्ता पैजामा भी हैं, और साथ में टिपिकल इंडियन आउटफिट्स जो मर्द पहनते हैं ये सब है, कैजुअल वेयर भी है। और इसके साथ साथ बच्चों के भी नए स्टॉक के कपड़े आ चुके हैं रानी क्रिएशन शॉप में, जो आप आकर खरीद सकते हैं अधिक घटाए हुए दामों पर। आपके एंटरटेनमेंट के लिए DVDs हैं जो क्लियर कर रहे हैं, ज्वेलरी भी क्लियर हो रहा है, इस समय में बहुत सारे ज्वेलरी हैं जो क्लियर कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे भाव में यहाँ पर चीजें मिलेंगी। तो याद रहे शॉप 33 बालाकलाबा स्ट्रीट उलंगेबा में स्थित है, सुबह 10 बजे खुलेगी और शाम को 4 बजे तक खुली रहती है, सातों दिन दुकान खुली रहती है। तो याद रहे, बहुत लोग पूछते हैं कि यार अभी भी आप लोग दुकान चला रहे हो, पूछते हैं रानी क्रिएशन चल रहा है? जी हाँ चल रहा है, क्योंकि आप विज्ञापन सुन रहे हो रेडियो ब्रिजबानी पर, पेपर में भी छपता है, आप देख रहे हैं, और सातों दिन चल रहा है, सिर्फ क्रिसमस के दिन बंद रहता है, वन डे ओनली। तो अगर आप नए हैं और अभी तक आए नहीं हैं, तो अपने गाड़ी में अगर आप लिखें कि हमें टेक मी टू रानी क्रिएशंस उलंगेबा, तो तुरंत आपको लाकर उतार देंगे जगह पर। याद रखना, जैसे टेक मी टू रानी क्रिएशंस उलंगेबा, क्रिएशंस में एस होता है इनमें, तो ये ध्यान में रहे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जालिमा कोको कोला पिला दे ये भाई, श्रेया घोषाल जी और वायु है।

0: ये मित्र जाली माँ कोको कोला पिला दे, आप सुन रहे थे और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये जो गीत आप सुन रहे थे। और चलें
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Yeah, Mitro, sahi baat hai. Aur financially a sale chal raha Rani Creations shop mein, jahan par aapko bahut hi ghatai damo par kuch to jewelry wagera clear kar rahe hain. Stock to aap bas samajh lena ki below cost bhi bahut item jayenge. तो आप आए रानी क्रिएशन शॉप में, अगर पहली बार आ रहे हैं और सुन रहे हैं प्रोग्राम तो पता है 33 बालाक्लावा स्ट्रीट उलंगेबा में। अपने गाड़ी में बस डालिए कि रानी क्रिएशंस उलंगेबा, वहां पर लेकर आ जाएंगे। चलो आज कुछ रोमांटिक गाने भी हैं लेकिन शादी से ताल्लुक गाने हैं, तो चले एक गाना है सात फेरे जिसको बोलते हैं।

जी मित्रों, साथ फिर एक गीत के बोल थे। उम्मीद कर रहा हूँ आप सुने होंगे, बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग था और बस आपके लिए बजाया था ताकि जिनकी ब्याह हो रही है, होने वाली है, उनको भी कुछ याद आ जाए कि भाई हम क्यों शादी करते हैं, किस तरह से रिश्ता वगैरह निभाना है। अलग अलग वचन जो लिए थे ये ध्यान में रख के चलें।

0: मित्र इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क है, क्या बात है। बहुत बढ़िया सा गीत था और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ ही आज का रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन के जो शो था यहीं पर खत्म हो रहा है। लेकिन याद रहे फाइनेंशियल ईयर सेल चल रहा है रानी क्रिएशंस शॉप में, जहाँ पर क्लियर कर रहे हैं ज्वेलरी वगैरह और बहुत ज्यादा स्टॉक है जो आइटम्स के क्लियर हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही उचित दामों पर आप खरीद सकते हैं। तो अगले शनिवार तक आगे दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: एक बार फिर स्वागत है आपका संगीत सरगम कार्यक्रम में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, भेंट कर रहा हूँ और पुनः जारी करते हैं कुछ गीतों को। और अब चलते हैं, काफी रोमांटिक गाने आज मैं बजा रहा हूँ आपके लिए। अरिजीत सिंह साहब अंतरा मित्रा जी के साथ एक गीत गाए हैं, गेरुआ जिसके बोल हैं।

0: जी मित्रों, आप सुन रहे थे बहुत ही लोकप्रिय गीत, और अमला जी थैंक यू वेरी मच, आपका फीडबैक हमेशा हमें अच्छा लगता है सुनने में, टिप्पणियां जो आप करती हैं ना दिल छू लेता है।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है, इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: जय मित्रों, आगे बढ़ते हुए चलें। कुड़माई, आज मैं बोला ना आपसे कि आज मैं गीत ऐसे बजा रहा हूँ, रिश्ते के बारे में गाने ज्यादा हैं और रोमांटिक भी हैं, लेकिन रिश्ते का है, बारे में किस तरह से हमें रिश्ता निभाना है ये सब जरूरी है। पति पत्नी दोनों को सोचना है, किसी के प्यार मोहब्बत में हो वो भी सोचना है कि सबको मान सम्मान देना, अगर नहीं भी हो कोई भी व्यक्ति मिले मान सम्मान देना है। तो चलो आगे बढ़ते हुए कुड़माई बहुत प्यारा सा गाना है, वन ऑफ माई फेवरेट्स, ये भी आपको सुनवाना चाहूंगा मैं।

जय मित्रों, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। आप सुन रहे थे और उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा लगा होगा ये गाना। और एक और गीत बजाने का वक्त है, इसे बजा देते हैं, फिर समय पूरा हो जाएगा आज का प्रोग्राम के। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, दरिया में फेंक दे चाबी, क्या बात है। मेरे तरफ से दिस इज फॉर यू।

जी हाँ मित्रों, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। इस गीत को यहीं पर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि निविया जी तैयार हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। अगले शनिवार को हम एक बार फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और समाप्ति की तरफ हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी कहाँ गया, अच्छा जी आ गया। यस प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजभानी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम

दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। हैप्पी वीकेंड मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स। जी हाँ, आप लोग और हम सब इतना अच्छा फील करते हैं ना वीकेंड पे, मतलब खुशी ही डिफरेंट होती है। मतलब चहकती हुई जो आवाज होती है ना हमारी, कितना सुकून देती है। मतलब सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी बुरा नहीं लगता, कुछ भी इरिटेटिंग नहीं लगता। और ये बात सिर्फ और सिर्फ वीकेंड में। जी हाँ, मतलब बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, वो भी हमारे लिए खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन वो कभी कभार आते हैं। वीकेंड तो एक ऐसी सेलिब्रेशन का नाम है जो कि हर हफ्ते के बाद में वो पूरी मेहनत मशक्कत जो हमने की होती है उसके बाद का जो इनाम होता है ना, वो वीकेंड के तौर पर हमें मिलता है। सो अगेन, ये वीकेंड आ गया है एंड मैं भी आ गई हूँ। और आपको पता है, अपना प्रोग्राम जो वीकेंड पे आता है उसको लेकर आई हूँ। जी हाँ, अकेले नहीं आई हूँ, लेकर आई हूँ टॉप 10 हॉट 10 को। और आप सब भी रेडी हो या नहीं हो जल्दी बता दीजिए, क्योंकि अगर नहीं हो रेडी तो हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको राइड पर लेकर जाने वाली हूँ। एक ऐसी राइड जो कि मजेदार गानों से भरी हुई है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ मजेदार गानों से, क्योंकि ये प्रोग्राम है टॉप 10 हॉट 10, मतलब जो सबसे ज्यादा मजेदार गाने हैं, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग गाने हैं, सबसे ज्यादा ऐसे जैजी वाइबी गाने हैं जो कि लिटरली आपको डांस करवा सकते हैं, आपको वाइब करवा सकते हैं, आपको ड्राइव पे अच्छे लगेंगे, किसी पार्टी में अच्छे लगेंगे, और तो और ऐसे बैठे हुए भी अच्छे लगेंगे, और कभी कभी तो आपका थिरकने का भी मन करेगा उन पर। उन्हीं गानों के साथ, उसी गजब के शो के साथ मैं आ गई हूँ। और अब बिना इंतजार किए इसको शुरू करते हैं। ये शो शुरू हो रहा है एक गाने के साथ जो कि है जवानी तो इश्क होना ही। जी हाँ, 10वें नंबर का गाना, क्योंकि पहले सबसे पहले शुरुआत होती है 10वें नंबर के गाने के साथ, और फिर धीरे धीरे हम नंबर 1 यानी कि टॉप के गाने पर पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले नंबर 10 पर कौन सा गाना है, वेल वो है ब्याह करवा दो जी। मतलब ब्याह करवा दो जी, मतलब मेरी शादी करवा दो जी। अब क्या आजकल के लोग सच में शादी करना चाहते हैं? वेल, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। पर पहले एक गाना, यही वाला गाना आप सबके लिए सुनते हैं, स्कोर फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी दोस्तों, ये तो सिर्फ कहने की बात है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। मतलब असलियत ये है कि बहुत सारे लोग, खासकर लड़कियां, खासकर जो लेडीज हैं, वो चाहती ही नहीं है शादी करना। आपको पता है, एक रिसर्च में सामने आया है और डाटा निकल कर आया है कि 2030 तक 29 साल से लेकर 40 साल तक सबसे ज्यादा अनमैरिड वुमेन देखने को मिलेंगे। मतलब 2030 में ही हमें ये डाटा जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेडीज का विश्वास जो है वो उठ गया है। हाँ, जेंट्स का अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेंट्स लोग तो आपको पता ही है, उनका नहीं चल सकता। जी हाँ, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ऐसे में विमेन कितनी इंडिपेंडेंट है वो उन्होंने दिखा दिया है। अब भाई, विमेन ना शादी नहीं करना चाहती, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहले शादी इसलिए करती थी क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती थी, लेकिन अब और काफी वक्त से ऐसा वक्त आ गया है, ऐसा टाइम आ गया है जब पूरी तरह से बाहर भी वो अपने लिए फाइनेंशियली कैपेबल बन सकती हैं, घर पर आकर वो काम कर सकती हैं, अपने बच्चों को पैदा कर सकती हैं, उनको नर्चर कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। सो बेसिकली विमेन आर लाइक कि ओके, मतलब जिंदगी में अगर हम सब कुछ कर सकते हैं और मर्द लोग, यानी कि मेन का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन वो इतना थोड़ा है, तो हम वो सारा पेन ले क्यों। जी हाँ, पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती थी जिसकी वजह से शादी कर लेती थी, लेकिन अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद ही फाइनेंशियली कैपेबल है। तो औरतों ने सोच लिया है कि ओके, जब हम खुद ही सब कुछ कर सकती हैं, तो हम सरदर्दी क्यों लें। एंड व्हेन आई से सरदर्दी, यू नो व्हाट आई मीन। सो मैं कहती हूं कि जितने भी मेरे मेल लिसनर्स हैं ना, मैं सच में कह रही हूं कि आप लोगों को ना अपनी गेम थोड़ी खतरनाक करने की जरूरत है। आजकल वुमेन ना सब कुछ देख रही है, सब कुछ, कि आप हेल्पफुल हो हर तरीके से। जी हाँ, और क्या आप उनको समझ रहे हो हर तरीके से, बिकॉज अब विमेन जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पहले वाली विमेन से। जी हाँ, सो शादी करने का उनका प्लान नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी शादी करवाना चाहते हो उनसे, तो अच्छे बन जाइए, अच्छे से मतलब बिहेव करना शुरू कर दीजिए, वो सब कर दीजिए जो विमेन चाहती है। दैट्स इट। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, तुम हमें लगती हो महिला मोर्चा की एडवोकेट। वेल, मैं खुद भी तो एक महिला हूँ, तो थोड़ी बहुत एडवोकेसी तो बनती है, राइट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं है, ऑफकोर्स मेरी तरफ से ही है, लेकिन इस लिस्ट का पार्ट है, और वो है हमने वहीं लगाया दिल। और ये है एक मूवी का गाना, पति पत्नी और वो दो, विचोकी लगी हुई थिएटर्स में, ऑलरेडी अच्छी कमाई कर रही है। गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब अगले गाने की तरफ अगर हम चलें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अगला गाना है वो है तू ही दिसदा। लेकिन उससे पहले जरा इसी गाने की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो गाना आपने अभी सुना, हमने वही लगाया दिल, वेल ये है मूवी पति पत्नी और वो दो का गाना। आप लोग बोलोगे कि पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो पार्ट टू तो हमने देखी थी, ये पति पत्नी और वो दो क्या है? वेल यहाँ पर पति है, पत्नी है और एक और लेडी है, लेकिन उसके अलावा एक और लेडी। आप लोग बोलोगे कि बॉलीवुड वाले नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। वेल ऑफ कोर्स बॉलीवुड वाले नहीं सुधरेंगे, और आपको मैं स्टार कास्ट भी बता देती हूँ। यहाँ पर है आयुष्मान खुराना, साथ में है उनकी बीवी के कैरेक्टर में वामिका गाबी, साथ में है सारा अली खान, और साथ में रकुल प्रीत भी। जी हाँ, मतलब जाल जो है वो बहुत ही खतरनाक है, और क्या होने वाला है आयुष्मान खुराना का, वेल वो तो तभी पता चलेगा जब आप इस मूवी को देखोगे। सो वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी, और अगर आपने ऑलरेडी देखिए तो प्लीज अपना कीमती रिव्यू देना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला गाना है 8वें नंबर का, विच इज अगेन ऑफ वामिका गाबी। मैं एक चीज देख रही हूँ कि वामिका गाबी ना बैक टू बैक सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रही है, मतलब इन्होंने ठान लिया है कि मैं ही चमकने वाली हूँ 2026 में पूरी तरह से। बैक टू बैक मूवीज आ रही है इनकी। सो ये है उनका गाना तू ही दिसदा, एंड देन आई एम गोना टॉक अबाउट इट, कौन सी मूवी है, कैसे है, लेकिन पहले आप गाना सुनिए।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, वीकेंड का वार है और मजेदार गानों का साथ है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उससे ज्यादा और क्या चाहिए? आप लोग बोलोगे कि सब कुछ चाहिए, बहुत सारा और एंटरटेनमेंट, अच्छा सा खाने को, कहीं बाहर खूबसूरत सी जगह जाने को। वेल, वो सब भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, आई मीन निकलने की। अगर आप लेजी बन के बैठे रहेंगे फिर काम नहीं चलेगा, तो बाहर निकलिए और देखिए क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, नेचर ना बहुत कुछ फोल्ड किए हुए आपके लिए, बहुत कुछ रखे हुए आपके लिए। जब आप नेचर में बाहर जाते हो ना, तो आप सबसे ज्यादा करीब अपने आप के अपने आप को पाते हो। जी हाँ, सो बाहर निकलिए और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज में जो है अपने आप को मशगूल कीजिए। जी हाँ, और एक और चीज मैं कहूंगी कि अपने दोस्तों को कभी मत छोड़िए। जिन भी लोगों के साथ आपको मजा आता है ना, मैं कहूंगी कि उन लोगों से अपने आप को सराउंड मत कीजिए जो कि आपको थोड़े से टॉक्सिक लगते हैं, परेशान करते हैं। वीकेंड में अपने दोस्तों को, उन लोगों को जो आपको अच्छा फील कराते हैं, पॉजिटिव फील करवाते हैं और जिनके साथ आप बहुत ज्यादा मजा करते हो, उन्हीं के साथ अपने आप को सराउंड कीजिए। ऑफ कोर्स आप मूवी देख सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन एक प्यारा सा गेट टुगेदर जो है वो बहुत ही अच्छे से हील करता है इस पूरे के पूरे वीक डेज के जो जितना भी केओस होता है, जितना भी वो स्ट्रेस होता है, वो सब निकाल देता है। सो अच्छी गपशप, अच्छा खाना पीना हील करता है, रिजुविनेट करता है। डू इट एंड लेट मी नो क्या आपने मजा किया अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर अगला गाना अब जो है वो है 7वें नंबर का और ये है ख्वाब देखूं। नाउ आई डोंट नो अबाउट यू, बट इस गाने के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या ही खूबसूरत गाना गा दिया है। सो मुझे लगता है आपको भी ये काफी पसंद है, क्योंकि ये काफी टाइम से हमारी लिस्ट में है। कभी बीच में एक दो बार ये चला गया था, लेकिन फिर से इसने वापसी की है, क्योंकि ये है मूवी एक दिन का गाना।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे कुछ पूछने वाली हूँ और आपका आपको उसको जवाब भी देना पड़ेगा। जी आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा तुम पूछती रहती हो, इवनिंग वाइब में भी तुम पूछ रही होती हो, वीकेंड में भी हमें चैन की सांस नहीं लेने दोगी। अच्छा चलो पूछो क्या पूछना चाहती हो। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के आजू बाजू भी कोई ऐसा काम करता है जो हमेशा तभी काम करता है जब कोई उसे देख रहा होता है। आप लोग बोलोगे क्या मतलब क्या हुआ। वेल, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर एक मीम आया और वहां पर बड़े ही खतरनाक तरीके से एक डॉगी नाव पे जा रहा था बड़े ही अच्छे से, और उसमें लिखा हुआ था ऑन माई वे टू HR अगेन फॉर निक नेमिंग माई को वर्कर मोशन लाइट बिकॉज दे ओनली वर्क वेन समवन वॉक्स बाय। जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना ध्यान से फिर से बताती हूँ। उसमें लिखा हुआ था ऑन माई वे टू HR अगेन फॉर निक नेमिंग माई को वर्कर मोशन लाइट बिकॉज दे ओनली वर्क वेन समवन वॉक्स बाय। सही बात है। सो जो आपके जो कलीग्स हैं जो तभी काम करते हैं जब HR उनके आजू बाजू से होकर जाते हैं, कोई उनके आजू बाजू से होकर जाता है और बाकी टाइम मस्ती कर रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, उनका नाम भी आप मोशन लाइट रख दो, क्योंकि मोशन लाइट भी तो तभी काम करती है ना जब उनके जब कोई चल के जाता है तो वो एकदम से काम करने लग जाती है और फिर जब उनको फील होता है कि नहीं अब कोई नहीं है तो फिर से वो बंद हो जाती है, वैसे होते हैं। और मैं सच में जानती हूँ कि ऐसे कुछ कामचोर कलीग तो हम में से हर किसी को मिला ही होता है। आप मुझे बताइए उस कामचोर कलीग का नाम आपके केस में क्या है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि है 6th नंबर का गाना ओ सुंदरी फ्रॉम द मूवी भूत बंगला। भूत बंगला का एक और गाना भी थोड़ी देर पहले इस लिस्ट में होकर गया था जो कि था 7th नंबर का। सो अगेन ये गाना जो है वो जबरदस्त है और प्लस गाना जबरदस्त होने के साथ साथ जो है वो आपको डांस करवाने में भी पूरी तरह से केपेबल है। सो भूत बंगला अगर आपने नहीं देखे जरूर देखे, वामिका गाबी एंड अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी, मतलब डर भी लगेगा लेकिन हंसी भी आएगी। अगर आपने देख ली है तो हमें बताइएगा जरूर। और ये रहा ये गाना।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसके साथ हमारी लिस्ट चल रही है, जो कि सच में बढ़िया बढ़िया गाने जिसमें हैं। और अब जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ आपके लिए, वो सच में आपको डांस तो करवाएगा लेकिन आपको वाइब भी करवाएगा, और आपको उसको सुन के ऐसा लगेगा अरे सोशल मीडिया पे अभी सुना है मैंने इसको, मतलब इतना चल क्यों रहा है ये गाना। वेल चलेगा ही, क्योंकि गाना बहुत ज्यादा जबरदस्त है। हाडी संधू ने इसे गाया है और ये है जवानी तो इश्क होना है। वेल बात तो सही है, अगर जवानी है तो इश्क तो होना ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इश्क जवानी का मोहताज नहीं है। इश्क तो कभी भी हो सकता है, किसी उम्र में भी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। ये वाला गाना वाओ इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का 5वें नंबर का गाना है। सुनते हैं इसको, वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के ठुमके भी हैं इसमें, लेकिन वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसकी वीडियो देखोगे। अभी के लिए आप ये गाना सुनिए और मुझे बताइए क्या आपको भी ये गाना अच्छा लगा।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपका भी मन कर रहा है क्या इसको बोलने का, वाओ या नहीं कर रहा है जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि अगेन गाना जो है इसे हिट बनाया है जानवी कपूर ने। सो जानवी कपूर उठती हैं और वो सोचती हैं कि ओके आई एम गोना गेट रेडी फॉर अ इवेंट, व्हाई नॉट क्रिएट अ रील, और वो रील क्रिएट करती हैं इस गाने पर और ये गाना इतना फेमस हो जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्योंकि वीकेंड है, आपको बताना पड़ेगा कि कुछ तो अच्छा है जो आप बाहर जाकर देख सकते हो, आई मीन थिएटर्स में जाकर देख सकते हो। सो जो मूवी मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है चांद मेरा दिल, ड्रामा म्यूजिकल रोमांटिक। जी हाँ, इसमें है लक्ष्य और साथ में है अनन्या पांडे। और ये मूवी, जैसे मैंने आपको बताया, जॉनर है म्यूजिकल रोमांटिक एंड ड्रामा। पिछला साल रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामास के लिए बहुत अच्छा रहा था, सैयारा वॉज दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। अब ये मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी है, काफी प्रमोशन जो है वो टीम कर रही है मूवी की, और यहाँ पर दोनों की केमिस्ट्री के बारे में भी बात हो रही है। वेल, केमिस्ट्री कितनी अच्छी है वो डिसाइड तो आप लोग करोगे। सो आप मुझे बताओगे आपको कैसी लगी मूवी। इसी के साथ ये तो है इस हफ्ते जो मूवी रिलीज हुई है उसकी मैंने बात कर ली, लेकिन बाकी की सारी मूवीज जो है वो पहले ही पुरानी वाली ही है। एंड वैसे पुरानी वाली मतलब पिछले कुछ हफ्तों में जो रिलीज हुई है, अगेन मैं आपको बताने वाली हूँ, पति पत्नी और वो दो आप इस देख सकते हो। इसमें आयुष्मान खुराना है, वामिका गाबी है, सारा अली खान है और साथ में है राकुल प्रीत। मतलब एक बंदा लेकिन लेडीज तीन, क्या होने वाला है वो तो आप खुद ही देख सकते हो। और इसी के साथ उसके अलावा दादी की शादी कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन। दादी की शादी में है नीतू सिंह और साथ में है कपिल शर्मा और साथ में और कौन है सोचिए। जी हाँ, साथ में है सादिया खातिब और इसमें ऋषि कपूर और नीतू सिंह की बेटी रिद्धिमा कपूर सहानी भी एक्टिंग करती हुई नजर आएंगी। मतलब ये उनका एक्टिंग डेब्यू ही माना जाएगा किसी पिक्चर में। सो अगेन आप देखिए और मुझे बताइए, क्योंकि इसमें नीतू सिंह दादी का कैरेक्टर प्ले कर रही है। जब पोते की शादी होनी है तब दादी अपनी शादी प्लान कर लेती है, क्या है माजरा, देखिए और फिर मुझे बताइए आपको कैसी लगी, क्योंकि ये है फनी मूवी, कॉमेडी, ड्रामा एंड फैमिली, और आजकल कम ही मूवीज होती हैं जो कि फैमिली के साथ बैठकर देखी जा सके। सो वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसके अलावा भी कुछ मूवीज है जो आप देख सकते हो, विच आई एम गोना टॉक अबाउट, पर पहले मैं आपको सुनाऊंगी अगला गाना जो कि है 14 नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का। गाने का नाम है जब तलक, फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2, जो कि जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आने वाली है। लेकिन उससे पहले ये गानों से आपको टीज करने की कोशिश कर रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ ये तो था चौथे नंबर का गाना। चौथे नंबर का गाना था ये, और चौथे नंबर के गाने के बाद अब किसकी बारी है? वेल ऑफ कोर्स तीसरे नंबर की बारी। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा चौथे के बाद तीसरा ही आता है, मतलब ये क्या बात हुई, तुमको गिनती नहीं आती क्या? मुझे आती है, मैं तो आपको टीज करने की कोशिश कर रही थी। जी आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा तुमको ज्यादा नहीं टीज करने लग गई हो, वेल आप मेरे लिसनर्स हो, दैट टू प्यारे, अगर आपको टीज नहीं करूंगी तो किसको करूंगी, राइट? तो चलिए आगे की और जाते हैं लिस्ट में। लेकिन उससे पहले, जैसे मैं आपको बता रही थी, आप क्या क्या देख सकते हो थिएटर्स में, मैंने आपको बताया आप देख सकते हो चांद मेरा दिल जो कि इसी हफ्ते रिलीज हुई है, आप देख सकते हो पति पत्नी और वो दो जो कि अगेन पिछले हफ्ते रिलीज हो गई थी, और इसके अलावा दादी की शादी आप देख सकते हो। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री में जाना है, थोड़े हिस्टोरिक जोनों में जाना है, तो आप राजा शिवाजी, ऑफकोर्स द छत्रपति शिवाजी महाराज, द ग्रेटेस्ट मराठा वॉरियर इन द हिस्ट्री, उनके बारे में ये कहानी है। बस मुझे इसके बारे में एक ही चीज जो है इसका ड्रॉबैक नजर आया, वो था रितेश देशमुख राजा शिवाजी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अगर किसी और ने किया होता लाइक रणवीर सिंह एंड विकी कौशल तो बात बन जाती, बट उसके अलावा स्टारकास्ट बहुत दमदार है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, ऑफकोर्स इट्स अबाउट हिस्ट्री, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, उनकी कहानी जानने को मिलेगी, और फिर आप मुझे बताइए क्या आपको ये अच्छी लगी। अगर आपको हल्का फुल्का देखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, भूत बंगला कैन बी ऑप्शन, मतलब डर भी लगेगा लेकिन हंसी भी आएगी, सो उतना डर नहीं लगेगा, यू आर गना एंजॉय दैट। ये तो हुआ बॉलीवुड मूवीज की बात, अब जरा जाते हैं सीधा हॉलीवुड मूवीज की तरफ, और वो है हॉलीवुड मूवीज में मॉर्टल कॉम्बैट सेकेंड, मॉर्टल कॉम्बैट 2 रिलीज हो चुकी है, वॉर्नर ब्रदर्स की मूवी है। आपको बताइए, जब जब वॉर्नर ब्रदर्स आते हैं वो अपने साथ बहुत बड़ा तूफान लाते हैं, बट ऑल इन अ गुड वे, जी हाँ, ऑल इन अ गुड सेंस, गो फॉर इट। और अगर आपने मॉर्टल कॉम्बैट देखनी है तो आपको ऑफकोर्स पता होना चाहिए, आपने मॉर्टल कॉम्बैट 1 नहीं देखी है तो बात नहीं बनेगी, बट यू नो वॉट, इट्स अ वेरी फेमस सीरीज एंड इट्स अ गेम ऑल्सो, सो लेट मी नो आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। इसके अलावा जो मूवी आप देख सकते हो वो है ली कॉन इन द ममी, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि इस मूवी को देखते देखते मुझे सच में ऐसा लगा था कि मुझे थिएटर से भागना ना पड़ जाए, लिटरली मुझे डर लगता है पर इतना डर नहीं लगता मूवीज को देख के, इसने मुझे बहुत बार डराया, मतलब आई थिंक मैंने 3 बार बोला होगा कि निविया शर्मा भाग जाओ यहां से, ये मूवी बहुत ही खतरनाक है, बट स्टिल मैंने मैनेज किया कि मैं उसे खत्म करूं, और फिर मैं एकदम वॉरियर की तरह थिएटर से बाहर आई। ऑफ कोर्स मैंने पूरी मूवी को देखा और मूवी अच्छी है लेकिन थोड़ी क्रीपी भी ज्यादा, मतलब आपको डर भी लगेगा, क्रीपी भी फील होगा, सो या इफ दैट इज योर जॉनर यू आर गोना लव इट। जी हाँ, और एक और मूवी है जो कि आप देख सकते हो, पर उसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगी तब जब उसका गाना आने वाला है, क्योंकि उसका गाना आने ही वाला है। जी हाँ, तो आइए, ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं जाके थिएटर्स में, अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। मुझे बताइएगा आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी, कौन सी नहीं। इसी के साथ यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि वो जो चांद मेरा दिल की मैं बात कर रही थी, जो कि इस हफ्ते रिलीज हुई है।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा दूसरे नंबर के गाने की तरफ, और ये है वो मूवी जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। ऑफ कोर्स इस मूवी के बारे में मैंने पहले भी बात की है, एंड जो गाना है वो है कृष्णा अवतारम पार्ट 1 द हार्ट हृदयम का। जी हाँ, अब ये मूवी जो है वो ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान यानी लॉर्ड कृष्णा की लीलाओं के बारे में है, बट नजरिया है उनकी दूसरी महारानी सत्यभामा का। जी हाँ, तो सत्यभामा जी के नजरिए से बनी है ये मूवी, और उसके साथ ही इसमें लॉर्ड कृष्णा की लीलाएं भी हैं। सो ऑफ कोर्स ये मूवी भी थिएटर्स में लगी हुई है, जरूर देखिए अगर आप देखना चाहते हैं, और फिर हमें बताइए आपको मूवी कैसी लगी। जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि इसे श्रेया घोषाल ने गाया हुआ, और इतने खूबसूरत तरीके से गाया हुआ है क्या कहूं। श्रेया घोषाल के साथ जावेद अली ने भी इसे गाया है, और सुवर्णा तिवारी, और साथ में मतलब बहुत सारे लोगों ने इसे मिलकर गाया, और क्या एलिमेंट ऐड किया। मतलब श्रेया घोषाल की आवाज इसमें मेलेडी ऐड ऑन करेगी। जावेद अली साहब, आपको तो पता ही है जावेद अली क्या गाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो ब्रिस्बेन में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सक्सेसफुल शो करके गए हैं, और उन्होंने इसमें अपनी आवाज दी है बेहद ही खूबसूरत। इट इज माई पर्सनल फेवरेट, ये गाना जो है वो मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से भी है इस लिस्ट में। डू लेट मी नो कैसा लगा आपको, और क्या आपने कृष्णा अवतारम मूवी देखी या नहीं देखी, और क्या आप प्लान कर रहे हो देखने का, जरूर बताइएगा ये गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। आपने सही सुना, विदा लेने का वक्त हो गया है, मतलब जाने का वक्त हो गया है। बट डोंट वरी, आएंगे, हम आएंगे और बहुत ही मजेदार तरीके के साथ, बहुत ही बैंड बाजे के साथ आएंगे। आप लोग बोलोगे कि है निवेश शर्मा, तुम्हारी शादी हो रही है? अरे मेरी शादी नहीं हो रही है, बैंड बाजे से मेरा मतलब है कि आप लोगों के लिए मजेदार सा प्रोग्राम लेकर आएंगे। इवनिंग वाइब में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, फन करना है, मजे करने हैं, अपने दोस्तों से मिलना है, अपने मजेदार लोग जो कि आपको खुश रखते हैं, आपको हंसाते हैं, आपको मजा करवाते हैं, उनके साथ अपने आप को सराउंड करना है। इस दुनिया में बहुत सारे टॉक्सिसिटी है, सो उस चीज से दूर रहना है, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना है। अगर किसी की हेल्प करने का मौका मिलता है तो हेल्प करनी है, और अच्छी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में करनी है। हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, और मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। ये लास्ट सॉन्ग, नंबर वन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा, और उसका गाना है मस्कारा। अगेन इसे तो आलिया भट्ट ने खुद प्रमोट किया है, सो ये गाना ऐसा तो नहीं है। आपको बताइए, नंबर वन सॉन्ग है इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का। मिलते हैं अब आपसे मंडे को। बाय, सी यू, टाटा।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit, one of the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
8: से. To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.